जहां जहां खालसा दी साहिब तहां तहां रचिया रियायत देग तेग फतह दर्द की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालस जी के बोल बल बोलो जी वाहे गुरु बोलो सिखान सिखी दान केस दान रहत दान बोबेत दान विसाह दान प्रसा दान दान सरदान नाम दान सिर अमृत सर साहब जी दे दर्शन इशनान चौंकिया झंडे बंदे जुग जुग अटल तरन का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी सिखां दा मन नीवा मत उची मत पत दा लखां आप वाहिगुरु छे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दार जिया श्री ननकण साहिब अते होर गुरद्वारे गुर धम्मां दे जिन्हां तों पंथ नूं भी छोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शे हे नमाने आंदे माने नेताने आंदे ताने नोटे आदि ओटे धन श्री गुरु रामदास साहिब जी आप जी दे पावन पवित्र स्थान सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी दे हजूर शब्द चौंकी आनंद साहिब जी की अरदास भुल चुप माफ करनी सच्चे पातशाह जी जिन्हां जिन्हां गुरमुखां प्रेमियां वल्लों कड़ाहा प्रसाद भेटा कीता गया है तिन्हां दी अरदास समूह संगत अते पहलियां दी अरदास सतगुरु जीआं सरबत साध संगत नूं अपने दरां घरां सिखी सिद्धक परसा नाम दान बख्श नाम शुभ पावनावां पूरिया करनिया आप दी दे हजूर कड़ाहा प्रसाद दी दे हाजर हैं दार प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरतौण दी आग्या बख्शन सुख होवे नाम चित आवे सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहे बंद होवन नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सरबत दा।

छे सात रे सबक सस मावे रिग कह रहे भरपूर राम नाम देवा में सुना लिया प्रचित जाए तो मुख अंतर बाय जुज मैं जोर छली चंद्रावल कान कृष्ण जादम।

ले कपड़े प्यारे तो कपड़ा नहीं अमल किया जा रे वे सचिया पड़े गुणे तीन चार विचार पाओ भगत करनी सच।

सिमल रुख सरायरा अत दीर्घ अत मोच ओए जे आवे आस कर जाय नरासे के फल फिके फुल बक बके कामना

बेचारंग कर्मदा तिरपले लाल ललाटंग दुए तोती बस्त्र कपाटंग जे जान से ब्रह्म कर्मं सबको कटने चो कर्मं कहो नानक ने चो त्यावे बिन

दया कपाह संतोख सूत जत गंढी सत वट ए जनेऊ जी का हई त पांडे तंत नाए टुटै नाम लगे नाए हुजले न जाए तन सो मानस नानका जोगल चले।

0: लख चोरियां लख जारिया लख गा लख ठगिया पहना मिया रात दिन सजी लाल तक पाव कते बामन बटे आए रिन खाय सब को आखे पाए हुए पराना सुटिए पी फिर पाई हो नानक तक न टुटे जे तक हो वे जोर महला पहला
1: नाय मनिया पति पूजे सलाही सच सूत दरगेंद्र पाये तग न तोड़ सबूत महला पहला तग न इंद्री तग न नारी पलके थुक बैन ताड़ी तग न पैरी तग न हथी तग न जेवा तग न अखी वे तग गाया पे वते वट तग अवरा कते ते पाड़ करे व्या हो कड़ कागल दसह

गौ ब्राह्मण को कर लाओ गोबर तर ना जाई पोती टिका तैज पमाली धान मलेशा खाई अंतर पूजा पड़े कते बा संजम तुरका

करी निवाज छुरी बगायर तिन का ताक तिन कर ब्राह्मण पूरे नाद ना पे आवे ओई साथ निरास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे आहा शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहे आपर मथे टिका तेड़ तोती तखाई हाथ सुरी जगत कसाई पैर होवे प्रभान मिले ताले पुजे प्राण बाकिया का कुठा बकरा खाना चौके ऊपर किसे ना जाना देखे चौका कड़ी कार ऊपर आए बैठा कूड़िया वे मत बिटाए आन साडा फिटे तन फिटे फेड़ करे मन झूठा जली परे कहो नानक सच

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਵੇਵ 343 ਅਸ਼ਾਰੀਆ 6 ਮੀਟਰ ਜਾਂ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ, ਟੀਆਰਐਮ 864 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ, ਐਫਐਮ 100.8 ਮੈਗਾ ਹਰਟਸ, ਐਫਐਮ 100.9 ਮੈਗਾ ਹਰਟਸ ਅਤੇ ਡੀਟੀਐਚ ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਦੇ 6 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋ ਹੁਣ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣੋ।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। गुजरात में प्रधानमंत्री वडोदरा से 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंड राष्ट्र को समर्पित करेंगे। अहमदाबाद हवाई अड्डे पर मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह मेगा प्रोजेक्ट अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है।
2: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है

0: में कई वर्ष लगे। 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, हाथ में लेके जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया।
1: प्रधानमंत्री कई नई रेल और मालगाड़ी सेवाओं की भी शुरुआत करेंगे। इस अवसर पर वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम तकनीक, डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन जैसे विषयों पर चर्चा होगी। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का 7वां संस्करण 11 सितंबर तक मुंबई में चलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कल गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की। इससे पहले गृह मंत्री ने गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के बीच अब कोई विवाद नहीं है। लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ज़ेवियर बेटल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में भारत की स्थायी सीट की मांग का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था की वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए इस निकाय में सुधार आवश्यक हैं। एक समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में श्री बेटल ने कहा कि भारत का आकार और वैश्विक महत्व एक विस्तारित सुरक्षा परिषद में इसके समावेश को आवश्यक बनाते हैं। उन्होंने कहा कि यूएनएससी का विस्तार उन प्रमुख देशों को शामिल करने के लिए किया जा सकता है जिनकी वर्तमान में कोई स्थायी भूमिका नहीं है। उन्होंने भारत और ब्राजील का उदाहरण दिया। विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर ने कहा है कि अनिश्चितता के दौर में भी भारत और लग्जमबर्ग के बीच भरोसेमंद संबंध है। नई दिल्ली में लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ज़ेवियर बेटल से मुलाकात के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और वित्तीय सहयोग संबंधों के प्रमुख क्षेत्र हैं। आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन की नई दिल्ली यात्रा से पहले ईरान ने भारत को एक महत्वपूर्ण राजनयिक केंद्र बताया है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि यह समूह द्विपक्षीय व्यापार और रणनीतिक सहयोग को गहरा करने के लिए मजबूत मंच प्रदान करेगा। एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघई ने नई दिल्ली के साथ अपने दीर्घकालिक संबंधों के महत्व पर बल दिया। ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने ग्रेटर नोएडा में माल और यात्री यातायात को अलग करने और गंगा एक्सप्रेसवे से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए हापुड़ बाईपास तक 105 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव पर कल लखनऊ में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में चर्चा की गई। प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि इस सड़क से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गंगा एक्सप्रेसवे के बीच दूरी घटकर लगभग 30 से 40 मिनट रह जाएगी। बयान में कहा गया है कि लगभग 15 किलोमीटर तक कनेक्टिविटी बढ़ाने से ग्रेटर नोएडा गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा। उत्तर प्रदेश में बारिश और बांधों से छोड़े गए पानी के कारण 25 जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में तेज से मध्यम वर्षा हुई। शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अहमदाबाद में आज सेमीफाइनल में शीतल देवी ने सरिता को हराया। खिताबी मुकाबले में शीतल का सामना कजाकिस्तान के एजेदा सेदान से होगा, वहीं कांस्य पदक मुकाबले में सरिता चीन की वांग हुईतिंग से खेलेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियो वेब 347.6 मीटर या 73 किलो हर्ट्स से असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। ज्ञान अमृत।

0: बुरे हालात नूं अपने उपर हावी ना होण दिओ। सदा सकारात्मक सोच रखो। इंज तुसी उन्ने मजबूत रवोगे जिन्ने परमात्मा ने थानू बनाया है।
1: ਇਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੋ ਹੁਣ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ ਭਗਤੀ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰਾਧਨਾ।

0: हुणे तुसी सरवण कर रहे सी भगती संगीत दा प्रोग्राम आराधना मेरे वेब 343.6 मिटोया 873 किलो हर्ट्स टीआरएम 864 किलो हर्ट्स एफएम 100.8 मेगा हर्ट्स एफएम 100.9 मेगा हर्ट्स अते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। हुण पेश है खेतीबाड़ी प्रोग्राम
1: खेतीबाड़ी।

भरत तथा शत्रुघ्न की अनुपस्थिति में राम वनगमन, महाराज दशरथ का स्वर्गवास आदि जो भी घटनाएं घटी, उनके फलस्वरूप भरत का हृदय ग्लानि से भर गया था। शोक और परिताप की ऐसी अवस्था में इस मनःस्थिति से उबारने के उद्देश्य से मुनिवर वशिष्ठ ने सांत्वना भरे जो उपदेश दिए, प्रस्तुत प्रकरण में आप उनका वर्णन सुनेंगे। मुनि का उपदेश था, स्वर्गवासी महाराज का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग कर प्रजा का पालन करो। तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करते देख श्री राम और जानकी भी सुख पाएंगे। श्री राम के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप कर स्नेह भाव से उनकी सेवा करना। मंत्रीगण ने भी भरत को गुरुवर वशिष्ठ की आज्ञा पालन करने का परामर्श दिया। माता कौशल्या ने अपने हृदय में धीरज धारण कर मुनिवर वशिष्ठ के उपदेशों का आदर करने का अनुनय किया।

हुण तुसी श्री रामचरित मानस जो लड़ीवार पाठ मानस कान दी 190वीं कड़ी सरवण कर रहे सी। मेरे वेब 343.6 मीटर या नेट्स 73 किलो हर्ट्स ते असी आकाशवाणी ते जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। परिचे लो परिचे तहे तुम दस दईए साढ़े इस मीटर तो अज रात तक प्रसारित किए जाने वाले प्रोग्राम ते उना दे प्रसारण समय का वेरवा। हुण तो थोड़ी देर बाद सवेरे 7:02 तो लैके 8 तक तुसी सुनोगे मनोरंजन ते जानकारी भरपूर प्रोग्राम सोनी सवेर। पंजाबी फिल्मी गीतां दा आनंद मानोगे प्रोग्राम महक पंजाब दी दे तहत सवेरे 8:40 ते सवेरे 9:02 ते एक फिल्म दे गीत तहत अज तुसी तुमसा नहीं देखा फिल्म दे गीत सुनोगे। सवेरे 9:30 वक् वक् कलाकारां दियां गाईयां गज़लां समात फरमाओगे। दस बज के 2 मिनट ते समा रहेगा प्रोग्राम हैलो फरमाइश दा। 11:05 ते तुसी सुनोगे प्रोग्राम तमक जलंधर पैंदी। 12:05 ते परिवारिक प्रोग्राम वसदे वेड़े पेश किया जाएगा। अज दे इस प्रोग्राम दे विच तुसी राष्ट्रीय अखादान पंदड़वाड़ा 25 अगस्त तो 8 सितंबर तक दे उत्ते जानकारी सुनोगे। अंतरराष्ट्रीय साखरता दिवस के मौके ते साखरता तो सिक्ख्या अते सशक्तिकरण वाले

0: अतीवसुगमः सेत्स्यति। उत्तरप्रदेशे नद्यः उत्तुङ्गस्तरे प्रवहन्ति, अनेन पञ्चविंशतिमण्डलेषु जलप्लावनं व्याप्तं। बरेली लखीमपुर क्षेत्रेषु अतिवृष्टिः जनजीवनम् अस्तव्यस्तम् अकरोत्। स्थितेः गभीरतां विलोक्य बरेली प्रशासनेन विद्यालयानाम् अवकाशः घोषितः। प्रशासनीय अधिकारिणश्च आपदुद्धारकार्याय नियोजिताः। भारत लक्जमबर्ग आर्थिक संबंधान नूतनाम औन्नत्यम नयन वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल लक्जमबर्ग उप प्रधानमंत्रिणा जेवियर बेटेल इत्यनेन सह मंत्रणाम अकरोत्। द्वयोः नेत्रोः संभाषणे लॉजिस्टिक्स अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्रेषु संयुक्त प्रकल्पानाम आरंभाय सहमतिः संजाता, येन उभयतः वाणिज्यिक संपदां विस्तारः संभविष्यति। नवदेहल्याम् आयोज्यमानं ब्रिक्स सम्मेलनं भारत-ईरान संबंधानां कृते नूतन दृष्टिं प्रदास्यति। ईरान विदेश मंत्रालयस्य प्रवक्ता इस्माइल बगाई अब्रवीत यत् राष्ट्रपतिः पेजेश्कियन भारत प्रवासे द्विपक्षीय व्यापारं वर्धयितुं महतीं रणनीतिं रचयिष्यति। अनेन बहुपक्षीय वार्ता माध्यमेन मध्य पूर्व क्षेत्रे शान्तिः सहकारश्च संवर्धयिष्यते। दक्षिण लेबनान इत्यस्य एकस्मिन् ग्रामे इज़राइल देशस्य वायव्याक्रमणे द्वादश जनाः मृत्युमुपगताः। रात्रौ कफर रुमाने इत्यत्र आवासीय गृहे आक्रमणानन्तरं द्वौ बालकौ चतस्रः महिलाः समेत्य एकादश जनाः मृत्युमुपगताः। वाहनस्य उपरि द्वितीयेन प्रहारेण एकः पराचिकित्सकः अम्रियत। इज़राइलीय सेना अवदत् यत् देशस्य अधिकृत क्षेत्रे सैनिकानाम् उपरि ड्रोन आक्रमणस्य प्रतिकाररूपेण ईरान समर्थितस्य सशस्त्र समूहस्य हिज़्बुल्लाह इत्यस्य मूल सौकर्याणि स्थलानि अपि च शस्त्राणां स्थानान्तरणं कुर्वन्तः नैके आतंकिनः आक्रान्ताः। भारतीय पारंपरिक क्रीडा क्षेत्रे नूतन इतिहासः रचितः। किर्गिस्ताने संधिपत्रे हस्ताक्षरं विधाय भारते विश्व बेल्ट मल्लयुद्ध स्पर्धायाः मार्गः प्रशस्तः कृतः। अस्यां स्पर्धायां नागा मल्लकला जागतिक मञ्चे स्वकौशलं दर्शयिष्यन्ति, येन भारतीय क्रीडकानाम् उत्साहः द्विगुणितः भविष्यति। इति वार्ताः।
1: मिडीवेव 347.6 मीटर नट्स 73 किलो हर्ट्स की असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। सवेर के 7 बज चुके ने, पेश ने हुण तक दियां मुख खबरां। रक्षा खरीद परिषद ने हथियारबंद फौजां लई 1,10,000 करोड़ रुपए तो वध दियां रक्षा खरीद तजवीज़ां नूं मंजूरी दे दित्ती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम नूं राजधानी दे सत्या निकेतन इलाके विच एक इमारत दे ढहण दी घटना दी उच्चतम पद्धर ते जांच करन दे निर्देश दित्ते ने। इमारत दे मालक नूं गिरफ्तार कर लिया गया है। भारतीय पुलाड़ खोज संगठन इसरो दे चेयरमैन वी नारायणन ने इसरो दे निजीकरण दीआं खबरां दा खंडन कीता है। केंद्रीय खेतीबाड़ी अते किसान भलाई मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नवी दिल्ली विच एक उच्च पदरी मीटिंग दौरान कृषि विज्ञान केंद्रां नूं मजबूत करन संबंधी कार्य योजना की समीक्षा की। बिहार विच हड़ा संबंधी हालत गंभीर बनी हुई है। गंगा अते कई होर प्रमुख दरिया कई थावां ते खतरे के निशान तो उपर वग रहे ने। पंजाब दे राजपाल अते केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ दे प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने चंडीगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड दे 11 केवी दे ओवरहेड बिजली वंड नेटवर्क नू जमींदोज केबल सिस्टम विच बदलन दे प्रोजेक्ट दा उद्घाटन कीता। अमृतसर देहाती पुलिस ने सरहद पारों नशीले पदार्था अते नाजायज हथियारां दी तस्करी करन वाले माड्यूल दा पर्दाफाश करदिआं 2 व्यक्तियां नू 15 पिस्तौलां अते 5 किलो हीरोइन समेत गिरफ्तार कीता है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने दुबई के सालाना निवेशक

जे मंजिल पानी है तो पहला घरों निकलना पैना है। हर रोज सवेरे उठ के खुद दे नाल लड़ना पैना है। सिर्फ भजन नाल कुछ नहीं मिलना इस जिंदगी विच। भज रहे हाँ क्यों पहला ये भी समझना पैना है। हर रोज सवेरे उठ के नवा एक ख्वाब बुनना पैना है। जिंदगी दी भज दौड़ विच सही रस्ता चुनना पैना है। किवें पहुंचांगे मंजिल तक ये तो बाद दी गल है। असी दौड़ रहे हाँ क्यों अजे दिल नूं पुछना पैना है। सोनी सवेर प्रोग्राम सुनने वाले की खिदमत विच पूजा हांडा दी प्यार भरी नमस्कार सत श्री अकाल ते अदब जी। दोस्तों असी रोज सवेरे उठते हैं, काम ते भजदे हां, मेहनत करते हां, पर की कदे असी खुद नूं पुछिया है कि असी यह सब क्यों कर रहे हैं? साडी जिंदगी विच भजन की वजह की है? एक छोटी जी मिसाल देखो, जंगल विच रोज सवेरे शेर भी दौड़दा है ते हिरण भी। दोवां दे दौड़न दा तरीका इको है, पर दोवां दा क्यों बिल्कुल वखरा है? हिरण इसलिए दौड़ता है कि जे अज पूरी ताकत दे नाल ना भज्या तो मारिया जाएगा, यानी उसका क्यों है अपनी जान बचाना। ते शेर इसलिए दौड़ता है कि जे अज ना भज्या तो भुखा मर जाएगा, यानी उसका क्यों है अपना पेट भरना। दोवां कोल जिउंदे रहण दा एक बहुत ही साफ अते मजबूत क्यों है। ठीक यही गल साडे ते भी लागू होंदी है। दुनिया विच हर सफल इंसान दी जिंदगी विच उसका क्यों बहुत साफ होंदा है। एक क्यों ही है जो सानू रोज सवेरे बिस्तर छड़न, संघर्ष करन अते हारन तो बाद भी दुबारा खड़े होने की ताकत दिंदा है। जदों तुहाडे अंदर दा क्यों साफ हो जाता है तो रस्ता किवें बनाउणा है वह जिंदगी अपने आप सिखा दिंदी है। किवें तां सिर्फ मंजिल तक पहुंचन दा एक तरीका है, पर असली ताकत तुहाडी वजह यानी कि तुहाडा क्यों है। जदों तुहाडे अंदर दा क्यों साफ हो जाता है तो रस्ता किवें बनाउणा है वह जिंदगी अपने आप सिखाती है। तो अज दी सवेर फिर खुद तुसी अपने आप नूं पुछो कि तुहाडा क्यों की है। आओ दोस्तों अपने अंदर दे उस सिड नूं जगाउंदे हां जो शायद अजे भी सो रहा है। सुनदे हां वेकअप सिड दा इस सुपर हिट ते जोशीला टाइटल ट्रैक ते आगाज़ करदे हां अज दे इस प्रोग्राम दा इस संगीतक सफर दे नाल।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਨੀ ਸਵੇਰ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰ ਦੇ 8 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ, 8:15 ਵਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 8:30 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। रक्षा खरीद परिषद ने 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। लग्जमबर्ग ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत के दावे का समर्थन किया। भारत अगली पीढ़ी के 6G नेटवर्क के विकास के लिए अमेरिका और 24 अन्य देशों के समूह में शामिल। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के सत्य निकेतन में ढही इमारत के मालिक सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। और भारत आज अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में 4 फाइनल मुकाबले खेलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंड का भी लोकार्पण होगा। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये परियोजना अब पूरी तरह तैयार हो चुकी है।
2: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे। 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया।
1: हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री कई रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य सरकार की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे।
3: प्रधानमंत्री के इस दौरे का मुख्य आकर्षण 20,700 करोड़ से अधिक के लागत से निर्मित वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 326 किलोमीटर लंबे 3 मुख्य खंडों को राष्ट्र को समर्पित करना है, जिससे यह पूरा फ्रेट कॉरिडोर नेटवर्क पूरी तरह से कार्यान्वित हो जाएगा। प्रधानमंत्री न्यू साणंद, न्यू मकरपुरा, न्यू उमरगाम और न्यू JNPT से मालगाड़ियों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही वे टांडा रोड और वडोदरा के बीच एक नई यात्री सेवा की भी शुरुआत करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए 9,700 करोड़ से अधिक की 3 रेल परियोजनाएं और 1,700

0: 280 करोड़ की 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री गुजरात सरकार की लगभग 2600 करोड़ की विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिनमें कडाणा बांध पर 110 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट और प्रधानमंत्री आवास योजना के घरों का लोकार्पण शामिल है। गुजरात प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री नवसारी में भाजपा के नए AI सक्षम हाईटेक कार्यालय का भी उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: प्रधानमंत्री इसके बाद मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। इसमें डिजिटल भुगतान, वित्तीय समावेशन और नई तकनीकों के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र को और मजबूत बनाने पर विचार विमर्श होगा। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा खरीद प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंजूरी कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में दी गई।
2: परिषद की बैठक में सेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, स्वचालित माइन लेयर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, ट्रॉल टैंक और सर्वत्र ब्रिज सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी गई। नौसेना के लिए अरुद्रा रडार की भी खरीद तथा मरीन गैस टर्बाइन के डिजाइन और विकास के बाद उनकी खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। वायुसेना की युद्धक क्षमता बढ़ाने के लिए लड़ाकू विमानों, परिवहन विमानों और हेलीकॉप्टरों से जुड़े कई प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा ग्राउंड बेस्ड मल्टीपर्पज जैमर और डिफेंस फोर्सेस सिक्योर एक्सेस कार्ड प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। रिशु के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेविये बेटल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था के अनुसार इस निकाय में सुधार आवश्यक है। एक साक्षात्कार में श्री बेटल ने कहा कि आकार और वैश्विक महत्व के कारण विस्तारित सुरक्षा परिषद में भारत की जगह आवश्यक है। एक रिपोर्ट।
3: श्री बेटल ने कहा कि परिषद का विस्तार उन प्रमुख देशों को शामिल करने के लिए किया जा सकता है जिनकी वर्तमान में कोई स्थायी भूमिका नहीं है। उन्होंने भारत और ब्राजील का उदाहरण दिया। श्री बेटल ने मौजूदा वीटो प्रणाली की आलोचना करते हुए इसे द्वितीय विश्व युद्ध का अवशेष बताया और तर्क दिया कि किसी भी एक देश को व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा समर्थित निर्णयों को रोकने की शक्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि सुरक्षा परिषद में 2/3 बहुमत वीटो को रद्द करने में सक्षम होना चाहिए। श्री बेटल ने सुरक्षा परिषद में अधिक प्रतिनिधि और लोकतांत्रिक निर्णय लेने की प्रक्रिया की मांग की। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजुश्किन ने भारत को एक महत्वपूर्ण राजनयिक केंद्र बताया है। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने आशा व्यक्त की कि ये समूह द्विपक्षीय व्यापार और रणनीतिक सहयोग प्रगाढ़ करने के लिए मजबूत मंच प्रदान करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि ईरान ने भारत के साथ अपने दीर्घकालिक संबंधों के महत्व पर बल दिया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
6: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत 6G नेटवर्क के विकास की वैश्विक पहल में अमेरिका और 24 अन्य देशों के साथ शामिल हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 6G पहल का उद्देश्य नेटवर्क की सुरक्षा मजबूत करना, प्रतिस्पर्धा और नई तकनीक को बढ़ावा देना है।

0: एक रिपोर्ट।
1: अमरीकी वाणिज्य विभाग ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत ने अमरीका और 24 अन्य देशों के साथ मिलकर ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि अगली पीढ़ी के नेटवर्क साझा सुरक्षा हितों को प्रतिबिंबित करें, प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करें और नवाचार को बढ़ावा दें। ये घोषणा केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद की G20 नवाचार मंत्री स्तरीय सम्मेलन के दौरान अमरीकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लटनिक से मुलाकात के बाद हुई। दोनों नेताओं ने 6G प्रौद्योगिकी के भविष्य और अगली पीढ़ी के दूर संचार नेटवर्क के विकास में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व पर चर्चा की। बैठक के दौरान भारत और अमेरिका ने सेमीकंडक्टर, AI और डेटा केंद्रों में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। राज्य मंत्री प्रसाद ने ISM 2.0 में अधिक अमरीकी निवेश की संभावना को प्रोत्साहित किया। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
2: दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत ढहने के मामले में पुलिस ने संपत्ति मालिक परिवार के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार लोगों में हरिराम, पत्नी उर्मिला और बेटा महेश शामिल हैं। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: मीडिया से बातचीत में पुलिस उपायुक्त अभिमन्यु पोसवाल ने बताया कि संपत्ति महिला के नाम पर थी और बिल्डिंग का बिजली कनेक्शन उनके पति के नाम पर था। वहीं बेटा बिल्डिंग का प्रबंधन संभालता था। दंपति को 14 दिन की न्यायिक हिरासत और बेटे को 2 दिन के पुलिस हिरासत में भेजा गया है। हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत हुई है। कुल 12 लोगों को एम्स दिल्ली लाया गया था। एम्स के अनुसार 3 लोग गंभीर हालत में हैं जबकि 2 की हालत स्थिर हो गई है, जिनमें से 1 को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने दिल्ली नगर निगम के 5 अधिकारियों को लंबित किया है। इनमें उपायुक्त, अधीक्षण अभियंता, कार्यकारी अभियंता, सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता शामिल हैं। दिलनशी आरजू, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने हापुड़ बाईपास तक 105 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का प्रस्ताव रखा है। इससे ग्रेटर नोएडा में माल और यात्री यातायात अलग होगा और गंगा एक्सप्रेसवे से बेहतर संपर्क स्थापित हो सकेगा। इस प्रस्ताव पर कल लखनऊ में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया। प्राधिकरण ने बताया कि सड़क से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गंगा एक्सप्रेसवे के बीच की दूरी घटकर लगभग 30 से 45 मिनट रह जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव राज्य में निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से अपने दुबई यात्रा के 3रे दिन आज दुबई में कई महत्वपूर्ण बैठकें करेंगे। वे संयुक्त अरब अमीरात के प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ व्यक्तिगत बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री भोपाल में आयोजित होने वाले वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2027 में निवेशकों को आमंत्रित करेंगे। उत्तर प्रदेश में वर्षा और बांधों से छोड़े गए पानी के कारण 25 जिलों में बाढ़ के हालात हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्षा को देखते हुए बरेली में अगले 2 दिन के लिए सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं और सरकारी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं।
4: राहत आयुक्त कार्यालय के मुताबिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत दलों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्तर पर नाव और मोटर बोट तैनात की गई है। बाढ़ के बाद संक्रमण और जल जनित बीमारियों की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को भी पूरी तरह सक्रिय रखा गया है। उधर बदायूं और बलिया में गंगा, शाहजहांपुर में राम गंगा, बाराबंकी, अयोध्या और बलिया के तुर्तीपार में घाघरा और लखीमपुर खीरी में शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के पूर्वी जनपदों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
2: मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में भारत के पूर्वोत्तर हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार आज बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। वहीं अगले 2 दिनों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम और तेलंगाना में गरज चमक के साथ तेज वर्षा होने की संभावना है। अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में आज भारत 4 स्वर्ण पदक मुकाबलों में अपनी चुनौती रखेगा। भारतीय महिला पैरा रिकर्व टीम फाइनल में चीन से खेलेगी। भारतीय पुरुष पैरा रिकर्व टीम स्लोवाकिया और पैरा कंपाउंड पुरुष टीम फाइनल में इराक से खेलेगी। वहीं मिक्स टीम W1 फाइनल में चेक गणराज का मुकाबला करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
2: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
6: धन्यवाद मुकेश। रक्षा खरीद परिषद की 1,10,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्ताव की मंजूरी की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, रक्षा मंत्री राजनाथ

0: राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई डीएसी की बैठक, 1,00,000 करोड़ के रक्षा प्रस्ताव को मंजूरी। दैनिक ट्रिब्यून का शीर्षक है, तीनों सेनाओं की बढ़ेगी ताकत, मिलेंगे नए रडार, हेलीकॉप्टर, टॉल टैंक, विशेष वाहन और जैमर। राजस्थान पत्रिका ने पहली बार शीर्षक दिया है, पीएम मोदी के कार्यक्रम की ऑनलाइन बुकिंग 1 घंटे में फुल, 42,000 वेटिंग, सारी व्यवस्था डिजिटल। प्रधानमंत्री मोदी आज वडोदरा में नमो फॉर विकसित भारत कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। हिंदुस्तान के अनुसार, हत्यारे पीजी का मालिक गिरफ्तार, निगम उपायुक्त समेत 5 अधिकारी निलंबित, असुरक्षित इमारतें खाली कराई गई। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, हाईकोर्ट के निर्देश, जांच हो, अफसर की जिम्मेदारी से नहीं बच सकते, एमसीडी अफसरों से होगी पूछताछ। अमर उजाला ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का गुवाहाटी विश्वविद्यालय में बयान देते हुए लिखा है, विश्वविद्यालयों में ज्यादातर स्वर्ण पदक विजेता महिलाएं, यह मूक क्रांति है। पंजाब केसरी ने गृह मंत्री अमित शाह का बयान देते हुए लिखा है, वैश्विक उथल पुथल के बावजूद आर्थिक वृद्धि कायम, भारत अन्य देशों से जुड़ा रहा, 15 अगस्त 2047 तक भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र होगा। हिंदुस्तान ने ऐलान शीर्षक से लिखा है, होर्मुज में नया मार्ग बनाएगा ईरान, पोतों के लिए कॉरिडोर के नक्शे जारी होंगे। अमर उजाला की सुर्खी है, हिमाचल समेत 15 से ज्यादा राज्यों में भारी बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट, बिहार में बाढ़ का कहर, 13 जिलों के 29 लाख से अधिक लोग प्रभावित, कई नदियों का जलस्तर बढ़ा।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। रक्षा खरीद परिषद ने 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। लग्जमबर्ग ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत के दावे का समर्थन किया। भारत अगली पीढ़ी के 6G नेटवर्क के विकास के लिए अमेरिका और 24 अन्य देशों के समूह में शामिल। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के सत्य निकेतन में ढही इमारत के मालिक सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। और भारत आज अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में 4 फाइनल मुकाबले खेलेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। The headlines. Prime Minister Narendra Modi to launch development projects worth over 35,000 crore rupees from Vadodara in Gujarat today. To also inaugurate Global FinTech Fest 2026 in Mumbai. Defence Acquisition Council clears capital acquisition proposals worth over 1,10,000 crore rupees for defence forces. Luxembourg backs India's bid for permanent seat in UN Security Council. India joins US and 24 other countries to shape development of next generation 6G networks. Delhi police arrests 3 members of family that owned collapsed building in Satya Niketan area of national capital. And India set to feature in 4 gold medal finals at World Archery Para Series in Ahmedabad today. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will visit Gujarat and Maharashtra today. In Gujarat, the Prime Minister will lay the foundation stones, inaugurate and dedicate to the nation various development projects worth over 35,000 crore rupees from Vadodara. Mr. Modi will also dedicate to the nation 3 important sections of the Western Dedicated Freight Corridor, marking the completion of the project. Talking to media persons at Ahmedabad Airport, Union Minister Ashwini Vaishnaw said, this mega project has now been fully completed and will be formally dedicated to the nation by the Prime Minister.
3: Dedicated freight corridor.
4: The eastern and western dedicated freight corridors are a major backbone of the country's transformation infrastructure. After several years of work, this landmark project has now been fully completed and now will be dedicated to the nation by Prime Minister tomorrow. In 2014, the Prime Minister took up this project and resolved all the issues and challenges associated with it. Today, the project has finally been completed.
3: Jitni bhi usme problems thi, unko solve kiya aur ab complete hua.
2: Our correspondent has filed this report.
5: A major highlight of PM's visit will be the dedication of 3 key sections of Western Dedicated Freight Corridor spanning 326 route kilometers. Built at a cost exceeding 20,700 crore, this marks the full

0: आशिकां दे सीने उत्ते रख कुड़िए, हाथ आशिकां दे सीने उत्ते रख कुड़िए।
1: जी दोस्तों, आशा ताई दा पंजाब दे नाल रूहानी रिश्ता देखने नूं मिलदा है। उन्होंने फिल्मी चॉकलेटी गीतां तों बहुत हट के बहुत ही श्रद्धा अते अदब दे नाल गुरबाणी शब्दां दा भी गायन कीता। उन्हां दी आवाज़ दे विच गाया शब्द मेरे साहिब अज भी सुनने वालियां दी रूह नूं सकून दिंदा है। नानक नाम जहाज़ फिल्म दे विचों, आओ आशा जी दी आवाज़ दे विच गाया ए शब्द सुणदे आं।

यूं तो हमने लाख हसीन देखी हैं, तुम सा नहीं देखा जी। दोस्तों जदों असीं इस फिल्म की कहानी की गल करते हैं तो इस फिल्म की कहानी असाम के काटपुर तो शुरू होती है, जिथे जिमीदार बद्री प्रसाद अपने दोस्त के पुत्र शंकर के नाल अपनी गोद लई ती मीना का रिश्ता तय करता है। असली शंकर की गैरहाजरी का फायदा उठा के सोहन नामक व्यक्ति जिहड़ा जाली शंकर बन के घर विच दाखिल हो जाता है, तो अखीर दे विच असली शंकर अपनी पछाण साबित करके सोहन की चाल का पर्दाफाश करता है। तो 1957 दे विच आई इस फिल्म की जदों स्टारकास्ट की गल करते हैं तो शमी कपूर मुख हीरो शंकर गोपाल के रूप के विच सामने आए, जिन्हों इस फिल्म ने रातों रात सुपरस्टार बना दिता। अमिता मुख हीरोइन मीना के रूप के सामने आई। प्राण इस फिल्म के मुख विलेन रहे, जिन्हों का नाम से फिल्म के सोहन।

कसम से देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ, देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के।

जी मुहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ तो ओ पी नैयर साहब का संगीत सीधा दिल दे विच उतर जाता है। इस गीत की बीट सुन के अज भी पैर साढ़े थिरकन लग पैंदे ने। ते हुण गल करदे आ प्रोग्राम दे विच मुख अदाकारा अमिता बारे। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म दे विच कहिंदे आ कि असल दे विच अमिता नूं एक वड्डी स्टार वजो लॉन्च करन दे लई ये फिल्म बनाई जा रही सी। फिल्म का सारा फोकस अमिता ते सी ते शमी कपूर नूं तां सिर्फ एक सपोर्टिंग हीरो वजो रख्या गया सी, पर फिल्म सुपरहिट होण तों बाद सारा क्रैडिट शमी कपूर लै गए। तो इस फिल्म की सफलता की सब तो वड्डी रीढ़ की हड्डी सी इसका संगीत, जिस नूं तैयार किया सी महान संगीतकार ओ पी नैयर ने।

छुपने वाले सामने आ, छुप छुप के जी न चला। जी दोस्तों, रफ़ी साहब का अनोखा ठहरा इस गीत दे विच सानू देखन नू मिलता है। इस गीत की खासियत यह है कि जदों इस विच शमी कपूर पर्दे ते नोकझोक करते ने तो रफ़ी साहब ने अपनी आवाज़ दे विच एक बहुत ही प्यारा नखरा ते शरारत भरी है। मजरू सुल्तानपुर पुरी जी दे जेड़े लिखे बोल ने, दूर खड़ी हैरान है क्या दांतों में यू उंगली ना दबा नू, रफ़ी साहब ने जिस अंदाज दे विच गाया वह सीधा शमी कपूर दे चुलबुले किरदार ते 100% फिट बैठता है। ओपी नैयर जी दी वक्री धुन, उन्हां दी अपने तेज़ म्यूजिक ते घोड़ा गा

जी दोस्तों, तुहानू ये जान के हैरानी होवेगी कि इस फिल्म दे गीत किसी एक गीतकार ने नहीं लिखे। फिल्म दे गीतां नू मजरू सुल्तानपुरी अते साहिर लुधियानवी साहब ने मिल के लिखिया सी। पहला ये फिल्म देवानंद नू ऑफर हुई सी अते उना दे नाल साहिर लुधियानवी जी फिल्म दे विच आए सी। साहिब ने फिल्म दे लई तीन खूबसूरत गीत लिखे जिमें संभाल के रखना कदम, पर जो देवानंद ने फिल्म छड़ी तो साहिर साहब भी चले गए। तो इस तो बाद एंट्री हुई मजरू सुल्तानपुरी साहब की, जिन्हां ने बाकी दे गीत अते फिल्म का सुपरहिट टाइटल ट्रैक लिखिया। इको फिल्म के दो महान गीतकारां दी कलम का जादू देखना वाकई बहुत ही सानू रेयर मिलता है। तो फिर आओ सुनते हैं इसे जुगलबंदी का एक होर बेहद रोचक तो जोशीला गीत, जिसनू आवाज़ दिती है रफ़ी साहब ने।

0: जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं, न जाने इनमें कौन है मेरे लिए।
1: हुणे तुसी सुन रहे सी एक ही फिल्म दे गीत, ते अज दी फिल्म सी तुमसा नहीं देखा।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: मेरे वेब 347.6 मीटर यानी 873 kHz से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। आओ हुण अलग अलग कलाकारां दीआं गाईआं गज़लां समात फरमाउंदे आ। सब तो पहला सुनदे आ जगजीत सिंह ते चित्रा सिंह दी आवाज़ दे विच गाई प्रोग्राम दी पहली गज़ल।

एक नज़र देख के हम जान गए आप क्या चीज़ हैं, हम पहचान गए। जगजीत सिंह ते चित्रा सिंह दिया आवाज़ां दे विच तुसीं इह गज़ल समात फरमा रहे सी। आओ हुण प्रोग्राम दी अगली गज़ल सुनदे हां। अहमद हुसैन ते मुहम्मद हुसैन दिया आवाज़ां दे विच गाई, मौसम आएंगे मौसम जाएंगे, हम तुमको भूल ना पाएंगे।

किसी ने भी ना देखा निगाह भर के मुझे, गया फिर आज का दिन भी उदास करके मुझे। पंकज उदास की आवाज़ के विच तुसी ये गज़ल समाप्त फरमा रहे सी। आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो इस वेले तुसी वख वख कलाकारां दियां गाइयां गज़लां समाप्त फरमा रहे हो। तो लोहन प्रोग्राम के विच अगली गज़ल सुनदियां भुपिंदर सिंह ते मिताली दियां आवाज़ां दे विच गाई हुई। सात सुरों का जो सरगम से रिश्ता है, कुछ ऐसा ही तेरा हमसे रिश्ता है।

0: अरे साय तू क्या कह रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के

खूबसूरत है तू हसीना बड़ी खूबसूरत है तू मुस्कुराती हुई कोई मूरत है तू।

0: सुरों की मलिका, संगीत का वो साज हो तुम, हर दिल में जो गूंजे वो खूबसूरत आवाज हो तुम। यूं तो चले गए हो इस दुनिया से अलविदा कहकर, पर हर धड़कन में जो जिंदा है वो एहसास हो तुम। जी बिल्कुल, आशा भोसले जी नूं अज असीं उन्हां दे जन्मदिन दे मौके दे उत्ते याद कर रहे हैं, तो उन्हां दी याद नूं डेडिकेट कर रहे हैं उन्हां दे गाए हुए खूबसूरत गीत। तो इस गीतां दे सिलसिले दे विच अगली फरमाइश, अगले कॉलर साढ़े तक आ गए ने, देखते हैं कौन आए ने। हैलो, नमस्कार जी, कौन बोल रहे हो?
1: रामनाथ बोल रहा हूं, फतेहगढ़ साहब तो। भैन जी,
0: रामनाथ जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं तुहाडा प्रोग्राम दे विच।
1: भैन जी बहुत धन्यवाद भाई, धन्यवाद भैन जी।
0: की कर रहे सी इस वेले?
1: भैन जी मैं तो प्रोग्राम सुन रहा सी बेटा जी।
0: अच्छा जी, प्रोग्राम सुन रहे सी, चंगे लगदे ने प्रोग्राम?
1: हां जी, प्रोग्राम तो बहुत ही लगदे ने।
0: चलो, तो सिर्फ आकाशवाणी जलंधर का केंद्र सुनते हो या होर भी जड़े रेडियो स्टेशन चलते हैं तुहाडे?
1: नहीं, जलंधर ऐसे बात हो रहा है, फोन पर हो भी लेकिन नहीं।
0: अच्छा जी,
1: जलंधर यानी तेरा मतलब जलंधर से इसमें ये नंबर एक पे है जी।
0: जी, तो फरमाइशी प्रोग्राम सारे केंद्र दे सुनते हो? ठीक है जी, आकाशवाणी दे नाल तुहाडा प्यार है जी, इसे तरह प्यार बनिया रहेगा। हुण अपनी पसंद दा गीत दस दिओ, केड़ा सुनोगे?
1: गीत पांडे किस्मत फिल्म दा गीत सुनावे जी, कदे दा मोहब्बत वाला आखियो मैं सदा लाए।
0: बिल्कुल जी, किस्मत फिल्म दे विचो आशा भोसले ते शमशाद बेगम दी आवाजां दे विच गीत तुहानू सुना रहे। शुक्रिया कॉल करन दे लई जी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। पश्चिम में समर्पित माल ढुलियारे गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंड वे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये परियोजना पूरी तरह तैयार हो चुकी है।
1: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे। 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया।
0: श्री मोदी कई रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य सरकार की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की शुरुआत भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। इसमें डिजिटल भुगतान, वित्तीय समावेशन और नई तकनीकों के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र को और मजबूत बनाने पर विचार विमर्श होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 3 दिवसीय दौरे पर श्रीलंका जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि दीर्घकालिक साझेदारी और गहरे ऐतिहासिक तथा दशकों से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण श्रीलंका भारत की पड़ोसी पहले नीति और महासागर संबंधी पहलुओं के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण साझेदारों में से एक है। इस दौरान रक्षा मंत्री श्रीलंका में रहने वाले भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने भारत को एक महत्वपूर्ण राजनयिक केंद्र बताया है। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने आशा व्यक्त की है कि ये समूह द्विपक्षीय व्यापार और रणनीतिक सहयोग प्रगाढ़ करने के लिए एक मजबूत मंच प्रदान करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा कि ईरान ने भारत के साथ अपने दीर्घकालिक संबंधों के महत्व पर बल दिया। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने सऊदी अरब में भारतीय समुदाय से बातचीत की। श्री सिंह ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा और संस्कृति के क्षेत्र में भारत तथा सऊदी अरब के संबंधों को मजबूत करने में भारतीय समुदाय के अमूल्य योगदान की सराहना की। श्री सिंह ने उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 के विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने में योगदान देने के लिए भी प्रोत्साहित किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और डॉ जितेंद्र सिंह आज मध्य प्रदेश के विदिशा में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में कैंसर के मरीजों की देखभाल के लिए कीमोथेरेपी डे केयर यूनिट का उद्घाटन करेंगे। ये नई इकाई कैंसर के मरीजों को बेहतर और सुव्यवस्थित ढंग से कीमोथेरेपी सेवाएं उपलब्ध कराएगी। दिल्ली यातायात पुलिस ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू चुनाव के सिलसिले में आज छात्र संवाद कार्यक्रम और चुनाव प्रचार को देखते हुए यातायात परामर्श जारी किया है। शाम 4 बजे तक नॉर्थ कैंपस के आसपास के इलाकों में यातायात प्रभावित रह सकता है। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। यूनेस्को ने 26 अक्टूबर 1986 को आम सभा के 14वें सत्र में 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। 1967 में पहली बार इस दिवस का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य व्यक्ति, समुदाय और समाज के लिए साक्षरता का महत्व उजागर करना है। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोगों से शिक्षा को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने की अपील की कि कोई भी सीखने से वंचित न रहे। श्री जोशी ने कहा कि शिक्षित और सशक्त नागरिक ही विकसित भारत की मजबूत नींव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज भारत रत्न डॉ भूपेन हजारिका की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉ हजारिका की आवाज ने पूर्वोत्तर की भावना को पूरे देश तक पहुंचाया। सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि भूपेन हजारिका के संगीत ने असमिया संस्कृति को उसकी संपूर्ण विविधता के साथ विश्व मंच पर पहुंचाया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में भारत के पूर्वोत्तर हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार आज बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी ते चलन

जी अगली फरमाइश सानू आई है जी बरेटा मंडी तो भेजन वाले ने फरमाइश ऊषा किरण रज्जी निक्की प्रीति ते मोनिका ये सब फरमाइश कर रहे ने सरबजीत चीमा दे गाए हुए गीत नू सुनन दी ते अगली फरमाइश सानू आई है जी सहारनपुर तो भेजन वाले ने फरमाइश आशा नारंग सुनैली ते सुरेश नारंग अगली फरमाइश सानू आई है जी वैष्णव कलोनी सनावत तो भेजन वाले ने फरमाइश मोहम्मद सादिक मुश्ताक अहमद मुश्ताक मोहम्मद शकीर मोहम्मद अकरम खत्री मोहम्मद अल्तमश खत्री रमेश गौड़ ते मोहम्मद शादाब अख्तर खत्री ये भी फरमाइश कर रहे हैं जी सरबजीत चीमा दे गाए हुए गीत सुनने की अगली जड़ी फरमाइश आई है जी

अगली फरमाइश सुनवाई है जी, अलीका तहसील डबवाली तो पेजन वाले ने फरमाइश, रूप सिंह लखोत्रा, करमजीत लखोत्रा, सरबजीत लखोत्रा, रानी सोनू रजनी होरा वालों। सो इन्हां दी फरमाइश पूरी कर दें तो आओ तुहानूं सुनाने आ। सुखशिंदर शिंदर की आवाज़ में सोहना जिहा गीत इंजॉय करो।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

मश टिंकू गिरधर सुमन गिरधर दिव्या गिरधर नमन गिरधर उर्मिला गिरधर ते संजीव गिरधर हो रहा। मतलब ये सेम फरमाइश है। अगली फरमाइश है ये जी, कुंडी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान तो। ये फरमाइश भेज रहे ने रमेश चंद चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी ते बेबी हिमांश। अगली फरमाइश सानू आई है जी गांधी चौंक रोपड़ पंजाब तो भेजन वाले ने फरमाइश। हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जतिंग विरक ते मीका विरक इन्हों की फरमाइश पूरी करते हैं। तो आओ थानू सुनाने गिप्पी गरेवाल की आवाज़ में प्यारा जिहा गीत।

0: ਸਭਾ ਤੇ ਜੈਸਮੀਨ ਅਖਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਮਕ ਜਲੰਧਰ ਪੈਂਦੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਗੀਤ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿਨ ਦੇ 12 ਵਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ।
1: कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। वे वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। वे पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे WGFC के 3 महत्वपूर्ण खंड राष्ट्र को समर्पित करेंगे। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये परियोजना पूरी तरह तैयार हो चुकी है।
2: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे। 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। वे वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। वे पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे WGFC के 3 महत्वपूर्ण खंड राष्ट्र को समर्पित करेंगे। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये परियोजना पूरी तरह तैयार हो चुकी है।
1: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे, 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया।
0: श्री मोदी कई रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य सरकार की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की शुरुआत भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। इसमें डिजिटल भुगतान, वित्तीय समावेशन और नई तकनीकों के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र को और मजबूत बनाने पर विचार विमर्श होगा।

0: 1966 में पहली बार इस दिवस का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य व्यक्ति, समुदाय और समाज के लिए साक्षरता का महत्व उजागर करना है। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोगों से शिक्षा को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने की अपील की कि कोई भी सीखने से वंचित न रहे। श्री जोशी ने कहा कि शिक्षित और सशक्त नागरिक ही विकसित भारत की मजबूत नींव हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज भारत रत्न डॉ. भूपेन हजारिका की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉ. हजारिका की आवाज ने पूर्वोत्तर की भावना को पूरे देश तक पहुंचाया। सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि भूपेन हजारिका के संगीत ने असमिया संस्कृति को उसकी संपूर्ण विविधता के साथ विश्व मंच पर पहुंचाया है। भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने चीन में एशिया कप के पूल मैच में आज दक्षिण कोरिया को 7-3 से हराया। कप्तान अनमोल एक्का ने 2 गोल किए। भारत के अब 3 मैचों से 7 अंक हो गए हैं। कल भारत अंतिम पूल मैच में चीनी ताइपे से मुकाबला करेगा। ये मैच जीतने पर भारत सेमीफाइनल में जगह पक्की कर लेगा। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज लगभग आधे प्रतिशत की गिरावट आई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 427 अंक गिरकर 75,705 पर और निफ्टी 104 अंक गिरकर 23,675 पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में भारत के पूर्वोत्तर हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार आज बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्ज ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हां। दिन दे 12:05 वज रहे ने। आओ सुनदे हां पारिवारिक प्रोग्राम वसदे वेड़े।

टीवी दा टूट गया शीशा वे कलर टीवी दा फेर किसी जुड़ो वांगू ले ले पेंतरे हैंड ग्रेनेड बने सेब संतरे पति कहिंदा दस टीवी क्यों तोड़िया

0: एक मिनट ली रुको ते सोचो, पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
1: जी, इस ब्रेक तो बाद सुनेहा परी ब्रेक तो बाद फिर तो दी स्वागत है तुहाडा अपने प्रोग्राम वस्ते बेड़े दे विच। आपां जिद्दां पहलां गलबात कर रहे सीगे, अखां दान दी गल कीती, खुश रहण दी गल कीती, ते इहदे नाल नाल होर वी बहुत सारीआं गल्लां दी सांझ पाणी है सारिआं दे नाल।
2: जी, और जदों परिवारां दी गल करदे आ खास करके ते इहो जिहे विशे हुंदे ने जिहड़े कि शायद असीं कई वार उहनां दी सांझ पाउंदे ही नहीं है। जिवें कि घर दे विच बजुर्ग हुंदे ने, उह मोबाइल फोन नूं लै के किसी वी तरहां दी उहनां नूं मुश्किल आ रही है, क्योंकि उहनां दे लई गलबात दा साझ साधन जिहड़ा है अजकल दे समें दे विच बन चुक्या है। ते इक फर्ज दे तौर ते जिहड़ा है उह ग्रैंड बच्चे जिहड़े हुंदे ने, खास करके ग्रैंड चिल्ड्रन जिहड़े ने, उह उहनां नूं सिखा सकदे ने, सिख्या दे सकदे ने। और जदों बच्चिआं दी गल करदे आ ते बच्चे वी अपणीआं मुश्किलां उहनां दे कोल लै के जा सकदे ने, और ग्रैंड पेरेंट्स उहनां नूं जिंदगी दे तजुर्बिआं तों सिखा सकदे ने कि किवें जिहड़े है उह घर दे विच काम कीते जांदे ने, बजट्स बणाए जांदे ने। छोटीआं छोटीआं गल्लां दी जदों सांझ पएगी ते जिहड़ी फिर मिडल जनरेशन है ना, उह अपणे आप ही बहुत प्यार दे नाल अग्गे वधेगी, ते इन्हां दोनों दे विचकार एक पुल दा काम करके इस प्यार नूं होर अग्गे लैके जाएगी।
1: बिल्कुल तुसीं ठीक किया गुरप्रीत, कि जिस तरीके दे नाल बच्चिआं नूं, अज दे बच्चिआं नूं, अज जिन्हां नूं असीं जेंजीज़ कहिंदे आ, उन्हां नूं सिखाउण दा एक सब तो वधिया तरीका इही है कि उन्हां दे सामने जो असीं करदे आ ना, उह बच्चे अपने आप सिख जांदे ने। उन्हां नूं बिठा के सिखण दी सिखाउण दी जरूरत नहीं पैंदी, ते उह सिखणा चाहुंदे वी नहीं। बैठ के तुसीं उन्हां नूं कोई लैक्चर टाइप दोगे तो तुहाडी गल नूं कदे वी नहीं सुन, कदे भी नहीं समझणगे, कदे भी उन्हें एग्जीक्यूट नहीं करणगे। पर जे तुसीं उही न्याणियां नूं, जवाकां नूं गल्लां गल्लां दे विच कोई गल्लां अजिहियां दसोगे, करोगे उन्हां दे सामने, ते ओह अपने आप ही सिख जांदे ने, फिर सिखाउण दी जरूरत ही नहीं पैंदी। तां ही तां गुरप्रीत कहिंदे ने कि जदों भी कोई बच्चा न्याणा सिखदा है या वह बाहर जाके विचरदा है, ते उहदियां जो भी वह एक्टिविटीज करदा है, हरकतां जिस तरह दियां वह करदा, उह तों पता चलदा है कि उहदे वड्डिआं ने उहनूं की सिखाया।
2: जी, और एक होर बहुत ही खूबसूरत चीज है जिहड़ी कि खास करके अज कल दे समें दे विच सानू सारयां नू करनी चाहीदी है, उह है जी इंटरनेट, सोशल मीडिया, या फिर जिहड़े ब्लू कलर दे वख वख तरह दे लिंक हुंदे ने, खास करके उहनां तों जिन्नी ज़्यादा दूरी बनाई जा सके, जिन्ने ज़्यादा सोहणे तरीके दे नाल सोशल मीडिया दा इस्तेमाल किया जा सके, उन्ना ही ज़्यादा वधिया। क्योंकि कई बार की हुंदा है कि जदों असीं इंटरनेट नू स्क्रॉल कर रहे हुंदे आ, उत्थे वख वख चीज़ां देख रहे हुंदे आ, सानू पता ही नहीं चलदा कि किहड़ियां खास करके कोई वैबसाइट्स ने या फिर किहड़े लिंक्स ने जिन्हां नू असीं ओपन नहीं करना, उहनां नू खोल लैंदे आ, ते उस तों बाद सानू बहुत ज़्यादा मुश्किलां दा सामना करना पैंदा। और अर्चना, ये वो चीज़ है जिस दे विच के उम्र भी ध्यान नहीं रखी जाती, क्योंकि बच्चे, बजुर्ग, वड्डे किसी नूं भी मुश्किल जिहड़ी है वह आ सकती है। सो इन्हां गल्लां बातां नूं भी परिवार दे विच एक विषय के तौर पर जरूर तो जरूर साझा करना चाहिए।
1: तो गुरप्रीत, इन्हां सारियां चीज़ां का इशारा किधर करता कि सानू जिहड़ा है कि पढ़े लिखे होना, जानकार होना, जागरूक होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक चंगे समाज की सिरजना तद ही हो सकती है जे असीं बिल्कुल अप टू द डेट होवांगे, लाइक सानू जानकारी भरपूर होएगी। ये नहीं कि आपां हउ परा करके हर गल नूं अगे वध जाइए ते कल नूं असीं आके किसी मुश्किल दे उत्ते खड़े हो जाइए।
2: और जदों असीं गल करदे हाँ इस सिक्ख्या दी, जदों असीं गलबात करदे हाँ साखरता दी, ते इन्नी क ज़्यादा जरूरी है साखरता, सिक्ख्या होना, कि जदों असीं समाज दे विच विचरदे हाँ, गल्लां बातां करदे हाँ, साडियां गल्लां बातां तों, साडे व्यवहार तों पता चलदा कि असीं अपनी जिंदगी नूं किस तरीके दे नाल बसर करना। और यही सिक्ख्या है जिहड़ी सानूं जीवन दे विच होर ज़्यादा वधिया तरीके दे नाल विचरना सिखाउंदी है। और जदों असीं अग्गे वधदे हाँ, विचरदे हाँ, गल्लां बातां करदे हाँ, साडी शख्सियत जिहड़ी है उस दे विच किन्ना कु निखार आउंदा है, ये चीज़ भी सानूं सिक्ख्या ही जिहड़ी है उह समझाउंदी है।
1: बिल्कुल जी, एक टिकाऊ समाज की जिहड़ी सिरजना तद ही हो सकती है जे साखरता दा जिहड़ा आंकड़ा है वह दसदा है कि असीं अग्गे नालों ज़्यादा एजुकेट लिटरेट होए हाँ, बट उहदे नाल नाल किते ना किते हले भी जिहड़ा साखरता दा रेट है वह थोड़ा नीवा है। ते इहनूं उच्चा करना असीं किद्दां कर सकदे हाँ, अपने बच्चिआं नूं ज़्यादा पढ़ा लिखा के, उन्हां नूं होर समझदार बना के, घर दे विच छोटियां छोटियां गल्लां दी सांझ पा के एक टिकाऊ समाज की, एक टिकाऊ घर की असीं सिरजना कर सकते हैं। ते इहदे नाल नाल जदों असीं गल करदे हाँ 8 सितंबर की, तो इस दिन की जिहड़ी सिरजना हुई, सिरजना ही मैं कहांगी, इहदा जिहड़ा नींह पत्थर रख्या गया, इहनूं स्टार्ट किया गया 1966 दे विच यूनैसको वल्लों, इह उपराला किया गया। उहदा मकसद उद्देश्य सिर्फ इक्को ही सीगा कि आओ रल मिल के असीं सारे समाज नूं एक टिकाऊ समाज की सिरजना
2: जी। और जदों असीं शुरुआती दौर की गल करते हैं तो उदों साखरता का अर्थ मुख्य तौर पर पढ़ना, लिखना, गिनती करना सी, ते समय के नाल नाल इसका अर्थ वध्या। अज जदों असीं डिजिटल जिंदगी जी रहे हाँ, बसर कर रहे हैं, तो ये साखर

0: जी गुरप्रीत, आपां अज अंतरराष्ट्रीय साखरता दिहाड़ा मना रहे हैं।
1: जी, और जदों असीं भारत की गल करते हैं ना, भारत में साखरता नूं समाजिक अते आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण साधन मनिया जाता है। और आज़ादी तो बाद ही जदों असीं गल करते हैं ना अर्चना, तो यह बालक सिक्ख्या, सर्व सिक्ख्या, ये सारिया ही मुहिमां जिहड़ियां ने ना जरूर चलाईया गई सन। जदों असीं साखरता मिशन की गल कर लीए या फिर नव भारत साखरता कार्यक्रम वर्गियां इहो जिहियां कारगुजारियां की गल कर लीए जिस दे जरिए कि खास करके बालगां नूं जिहड़ा है वह साखर करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी मनिया जाता है। और जदों ये विचारधारावां अगे आउंदियां ने, जदों ये सोच शक्ति अगे आउंदी है और नाल दी नाल समाज बहुत ही सोहणे तरीके दे नाल अपना हत्थ फड़ाउंदा है अगे वध के कि सच्ची असीं वी नाल तैयार बर तैयार खड़े हाँ, इस साखरता नूं होर अगे लैके जावांगे, सिक्ख्या नूं होर अगे लैके जावांगे। तो सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं, जिंदगी दे बहुत सारे पाठ जिहड़े ने ना वह भी पढ़ाउणे बहुत ही ज़्यादा जरूरी मन्ने जांदे ने, क्योंकि साखरता दा मतलब सिर्फ ते सिर्फ अक्खर पछाणना नहीं हुंदा। असल साखरता वह है जिस नाल व्यक्ति जानकारी नूं समझ सके, अपने अधिकारां बारे जाण सके, सही फैसले लै सके और समाज दे विच बहुत ही वधिया तरीके दे नाल आत्म विश्वास दे नाल अग्गे वध सके।
0: बिल्कुल जी, ते इस वरे दा जिहड़ा विशा है वह भी है लोकां, धरती अते खुशहाली लई साखरता, यानी कि सानू सारयां नूं साखर होना चाहिए है, पढ़ाई लिखाई वल होर एक हंबला मारना चाहिए है। तो अज जदों असी खास दिन की गल करते हाँ, साखरता दिवस की गल करते हाँ, तो तुहानूं असी अज रूबरू करवाउण जा रहे हाँ 12:30 बजे पूरे साखरता तो सिक्ख्या अते सशक्तिकरण वल असी वध रहे हैं। तो उसकी जानकारी सानू दे रहे हैं डॉक्टर सुरजीत लाल जी, तो उन्होंने गलबात की है पूनम होरा ने।
1: और जदों जी बिल्कुल जदों इस गलबात की असी गल करते हैं तो सारे ही जरूर ये गलबात असी सुनांगे और खास तरीके दे नाल कीती हुई गलबात के जरिए जाणांगे, जान पहचान जिहड़ी है वह की जाएगी। सो सुनदे हां डॉक्टर सुरजीत लाल नाल कीती हुई गलबात, जिहड़ी गलबात की है पूनम जी ने।
2: कहिंदे ने कि साखरता अजिहा हथियार है जिस दे नाल असीं जिंदगी दीआं कई औकड़ां दा मुसीबतां दा सामना कर सकदे हां। साखरता अजिहा चानण है जिस दे नाल असीं जिंदगी दे हनेरियां नूं दूर कर सकदे हां। इस लई साखरता नूं सैलीब्रेट करन दे लई, साखरता बारे जागरूकता लिआउण दे लई साडे देश दे विच साखरता दिवस वी मनाया जांदा है। पर साखरता नूं असीं सिर्फ पढ़न लिखण दी योगता तक सीमित करके नहीं देख सकदे। अज के समय में साखरता का अर्थ बहुत ही व्यापक ते विशाल हो गया है। अज असी इस विषय बारे डॉक्टर सुजीत लाल उन्होंने नाल गलबात करनी है, जो कि सकत्तर ने इंडियन रैड क्रॉस ब्रांच जलंधर दे ते रिटायर्ड जिला गाइडेंस काउंसलर ने। डॉक्टर सुरजीत लाल जी, सब तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम च।
3: शुक्रिया पूनम मैम जी।
2: जिस तरह असी गल की है कि साखरता का जो अर्थ है सिर्फ पढ़ना लिखना या डिग्रियां लेना ही नहीं है, बल्कि अज के समय के मुताबिक इसका अर्थ होर भी विशाल हो गया है, तुहाडे मुताबिक साखरता तो की भाव है?
3: इस तो पहला कि आपां साखरता दा मीनिंग जिहड़ा आ अपने स्रोतियां दे नाल डिस्कस करिए, मैं दसना चाहुंदा आ कि जदों कोई भी दिन सैलीब्रेट किया जाता है उस दे पिछे इक्को ही एक मंतव हुंदा कि उस विषय नूं हाईलाइट किया जाए, उस विषय बारे वध तो वध जागरूकता फैलाई जाए। बेशक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की गल होवे जां फिर युद्ध नशियां विरोधी गल होवे, ते जिस तरह साखरता की असीं जदों गल करदे आं ते इसका मतलब सीधा ही जिहड़ा आ असीं लैंदे आ पढ़ाई दे नाल। लेकिन इत्थे मैं एक गल कहनी चाहुंदा कि जदों असीं पढ़ाई की गल करते हैं वह सिर्फ कागजी एक डिग्रियां दे नाल संबंधित हो जाता, पर जदों व्यक्ति कोई भी आ पढ़ता आ लिखता आ जां साखरता मुहिम दे विच अपने आप नूं एक अहम हिस्सा मानता आ, तो उस समय उसने जिंदगी दे बहुत सारे जिहड़े आ उतरा चढ़ा देखने हुंदे आ, कई चीज़ां नूं महसूस करना हुंदा आ, एक जीवन नूं जीउण दी

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਸਦੇ ਵੇਲੇ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿਨ ਦਾ 1 ਵਜ ਰਿਹਾ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਕਨਕਲਤਾ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। उन्होंने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे WGFC के 3 महत्वपूर्ण खंड राष्ट्र को समर्पित किए। प्रधानमंत्री इस समय जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: 50,000 आधुनिक कोच तो किए ही, करीब 2.5 लाख वैगन, मालगाड़ी के लिए जो वैगन होते हैं, भारतीय रेल में जोड़े गए हैं 2.5 लाख। साथियों, अब भारत चिप से लेकर शिप तक निर्माण की एक नई गाथा लिख रहा है। यानी पुर्जे भी हमारे और प्रोडक्ट भी हमारा, आत्मनिर्भरता की पूरी चेन भारत में ही बनेगी। और ये हम सोलर पावर के मामले में देख रहे हैं, जैसे कड़ाना डैम पर जो फ्लोटिंग सोलर प्लांट प्रोजेक्ट है।

0: कुछ साल पहले तक देश में सोलर प्रोजेक्ट लगाने बहुत महंगे पड़ते थे, क्योंकि पीवी मॉड्यूल से लेकर हर प्रकार का हार्डवेयर इंपोर्ट करना पड़ता था। लेकिन बीते वर्षों में हमने भारत में ही पीवी मॉड्यूल बनाने शुरू किए।
1: प्रधानमंत्री आज मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। इसमें डिजिटल भुगतान, वित्तीय समावेशन और नई तकनीकों के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र को और मजबूत बनाने पर विचार विमर्श होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 3 दिवसीय दौरे पर श्रीलंका जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि दीर्घकालिक साझेदारी और गहरे ऐतिहासिक तथा दशकों से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण श्रीलंका भारत की पड़ोसी पहले नेते और महासागर संबंधी पहलुओं के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण साझेदारों में से एक है। रक्षा मंत्री श्रीलंका में रहने वाले भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में भवन ढहने की घटना में घायल हुए लोगों से मिलने के लिए आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का दौरा किया। पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रभावित छात्रों और मजदूरों के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि इस घटना में 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 12 घायलों को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया है। दिल्ली यातायात पुलिस ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डोसू चुनाव के सिलसिले में आज छात्र संवाद कार्यक्रम और चुनाव प्रचार को देखते हुए यातायात परामर्श जारी किया है। शाम 4 बजे तक नॉर्थ कैंपस के आसपास के इलाकों में यातायात प्रभावित रह सकता है। बिहार में गंगा, गंडक, कोसी और सोन समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में कमी आने से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को राहत मिली है। हालांकि कुछ इलाकों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। 1967 में पहली बार इस दिवस का आयोजन किया गया था। इसका उद्देश्य व्यक्ति, समुदाय और समाज के लिए साक्षरता का महत्व उजागर करना है। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोगों से शिक्षा को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने की अपील की कि कोई भी सीखने से वंचित न रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज भारत रत्न डॉ. भूपेन हजारिका की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज दोपहर के कारोबार में गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 456 अंक गिरकर 75,676 पर और निफ्टी 117 अंक की गिरावट के साथ 23,662 पर था। भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने चीन में एशिया कप के पूल मैच में आज दक्षिण कोरिया को 7-3 से हराया। कप्तान अनमोल एक्का ने 2 गोल किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मेरी वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असि आकाशवाणी ते जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। दिन दे 1:05 वज रहे ने। आओ हुण तुहानू साडे दिन विच बाकी दे रहिंदे प्रोग्राम्स ते उहनां दा प्रसारण समां दस दईए।

0: मुरम्मत ज मुड़ वसेबा कारज करके पहल के आधार से सुधारिया जाना चाहिए है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन्हें सरकारी इमारतों को असुरक्षित ऐलाना गया है उन्होंने किसी भी हालत में उदों तक वर्तन की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए जदों तक दुरुस्तगी के जरूरी काम पूरे नहीं हो जाते और उन्होंने दोबारा सुरक्षित नहीं ऐलान दिया जाता। मंत्री ने यह भी हदायत की कि किसी भी सरकारी इमारत ज पुल आदि की ढांचागत मजबूती को प्रभावित करने वाला कोई भी बदलाव सोध उसको चौड़ा करना ढाणा ज होर कम समर्थ अधिकारी की अगाऊ प्रवानगी तो बिना नहीं किया जाना चाहिए। अजिहे सारे कम लागू नियमों तकनीकी कोडा ते विभागी हदायतों मुताबिक किए जाने चाहिए ने। पंजाब कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत ने गवर्नमेंट आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स कॉलेज जलंधर विखे खेडा वतन पंजाब दियां 2026 तहत जलंधर पश्चिमी दे ब्लॉक पदरी खेड मुकाबलियां दा उद्घाटन किया। इस मौके संबोधन करदिया मंत्री ने कहा कि खेडा वतन पंजाब दियां ने सूबे भर विच एक मजबूत खेड सभ्याचार नूं उत्साहित करन विच अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि इस पहलकदमी तहत सालाना खेड मुकाबलिया ने ना सिर्फ वड्डी गिणती विच नौजवानों नूं खेडा विच हिस्सा लैण लई उत्साहित किया सगों हर उम्र वर्ग के खिडारियों नूं आपना हुनर दिखाउण लई इक मंच प्रदान किया है। श्री भगत ने कहा कि सूबा सरकार जमीनी पद्धर से खेड बुनियादी ढांचे को मजबूत करन आते नौजवानों को खेडा विच हिस्सा लैण लई उत्साहित करन लई पिंड पद्धर से आधुनिक खेड मैदान विकसित कर रही है। कैबिनेट मंत्री ने नौजवानों को नशा तो दूर रहन आते नशा मुक्त तिरंगला पंजाब बनाउण लई खेडा विच सरगर्मी नाल हिस्सा लैण दी अपील भी की। श्री गुरु रविदास जी महाराज के 650वें प्रकाश पुरब नूं समर्पित पंजाब सरकार वल्लों कराए जा रहे समागमां दी लड़ी तहत कल शाम नूं नवी अनाज मंडी नकोदर विखे गुरु जी के जीवन फलसफे अते सिख्यावां ते आधारित ड्रोन शो करवाया गया। शो दौरान 500 ड्रोना राहीं आसमान विच श्री गुरु रविदास जी महाराज के जीवन अते उन्हां दे समाजिक बराबरी दया समाजिक न्याय मनुखता अते आपसी सांझ दे संदेश नूं प्रभावशाली ढंग नाल पेश कीता गया। इस मौके संबोधन करदिया हलका विधायक इंद्रजीत कौर मान ने कहा कि इस विलखण पहलकदमी का उद्देश नौजवान पीढ़ी नूं श्री गुरु रविदास जी दीआं सदीवी सिख्यावां तों जाणू कराउणा अते आपणी अमीर समाजिक ते अध्यात्मक विरासत नाल जोड़ना है। जिक्रयोग है कि अज 8 सितंबर नूं लायलपुर खालसा कॉलेज जलंधर 9 सितंबर नूं शाहकोट 10 सितंबर नूं सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल रंधावा मसंदा ते 11 सितंबर नूं नवीं दाणा मंडी फिलौर विखे ड्रोन शो करवाए जाणगे। जनतक वंड प्रणाली की महत्ता से जोर देण अते इस नूं होर सुचारू बनाउण दे मंतव नाल कल चंडीगढ़ के सैक्टर 26 स्थित महात्मा गांधी राज लोक प्रशासन संस्थान विखे एक सैमीनार करवाया गया। पीडीएस सुधार पारदर्शिता तकनोलॉजी अते पोर्टेबिलिटी ते केंद्रित इस सैमीनार विच वख-वख बुलारियां ने लाभपात्रियां दे लाभ लई पीडीएस नूं होर मजबूत बनाउण लई अपने कीमती विचार सांझे कीते। इस दे नाल ही प्रादेशिक खबरां खत्म हुईयां। साडा एक्स हैंडल है @AIRRN जलंधर। राष्ट्रीय खबरां दा अगला बुलेटिन तुसीं सुणोगे दोपहर बाद 1:40 ते। नमस्कार।
1: मिनीवेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते असीं आकाशवाणी ते जलंधर केंद्र तों बोल रहे हां। दिन दा 1:15 बज रहा। आओ सुनदे हां प्रोग्राम फौजी वीरां लई।

किशोर कुमार ते आशा भोसले दी आवाजा विच तुसी सुन रहे सी दर्द फिल्म चो लिया गया गीत। आओ सुनदिया प्रोग्राम दा अगला गीत फिल्म सनम तेरी कसम चो लिया गया, आवाज आशा भोसले दी।

दुनिया इस फिल्म का गीत तुसी सुन रहे सी किशोर कुमार ते आशा भोसले दी आवाजा विच और सुनदे प्रोग्राम दा अगला गीत फिल्म नमकीन चलिया गया आवाज आशा भोसले दी।

0: एक दी इलाज दौरान मौत हो गई। घटना तो बाद स्थानक लोगों ने सिजुआ धनबाद मुख सड़क से प्रदर्शन किया। भारतीय जूनियर हाकी टीम ने अज चीन विच एशिया कप के कपूल मैच विच दक्षिणी कोरिया नूं 7-3 नाल हरा दिता है। कप्तान अनमोल एका ने 2 गोल किए। भारत के हुण 3 मैचों तो 7 अंक ने। कल भारत अपने आखिरी पूल मैच विच चीनी ताइपे खिलाफ खेडेगा। यह मैच जितने नाल भारत सैमीफाइनल ही अपनी जगह पक्की कर लेगा। संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान विच अहमदिया भाईचारे विरुद्ध वितकरे ते हिंसा दीयां लगातार खबरां ते गंभीर चिंता प्रगट कीती है। संयुक्त राष्ट्र के मनुखी अधिकार माहिरां ने पाकिस्तान नूं अजिहे मामले विच सज़ा तो बचण ते चलन नूं खत्म करन दी अपील कीती है। सोमवार नूं जनेवा तो जारी एक बयान विच माहिरां ने पाकिस्तानी अधिकारियों नूं भाईचारे की सुरक्षा नूं यकीनी बनाउण अते देश के अंतरराष्ट्रीय मनुखी अधिकारां संबंधी जिम्मेवारी नूं पूरा करन दी अपील कीती। पाकिस्तान की संसद ने 1974 विच अहमदिया भाईचारे नूं गैर मुस्लिम ऐलानिया सी। एक दहाके बाद उन्होंने खुद को मुसलमान कहने पर रोक ला दी गई थी। उन्होंने धार्मिक प्रचार में शामिल होना और हज लिए सऊदी अरब की यात्रा करने पर भी रोक है। ईरान ने चेतावनी दी है कि यह उस दी संपत्तियों से अमरीका के होर हमलों मगरों खाड़ी इलाके अमरीकी तेल ते गैस अदारों समेत ऊर्जा बुनियादी ढांचे को निशाना बना सकता है। ईरान की संसद के स्पीकर मुहम्मद बाकर काली बाफ ने कहा कि जेकर साड़ी संपत्ति ते हमला होंदे तां जवाबी कार्रवाई की जाएगी। अंत विच चोणवीआं खबरां एक बार फिर सुन लो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज वडोदरा विच 35,000 करोड़ रुपए तो वध दे वख-वख विकास प्रोजैक्टां दा उद्घाटन किया ते नींह पत्थर रख्या। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अज तो श्रीलंका के 3 दिन सरकारी दौरे ते होणगे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कांग्रेस संसद मैंबर राहुल गांधी नूं 2019 दे मानहानि मामले विच जारी किया गया समन रद्द करन तों इनकार किया है। अज अंतरराष्ट्रीय साखरता दिवस है। सिक्ख्या मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि साखरता ज्ञान मौकियां अते बेहतर भविख का राह खोलती है। भारतीय जूनियर हाकी टीम ने एशिया कप के पूल मैच में दक्षिणी कोरिया को 7-3 नाल हरा दिता है। इस दे नाल ही खबरों का बुलेटिन खत्म होंदा है। साडा अगला प्रदेशक खबरों का बुलेटिन शामी 6:20 ते होएगा। नमस्कार।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं नीतिका त्यागी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए के तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और कौम के नाम वक्फ किया। वजीर आजम ने 2800 किलोमीटर के बार बर्दारी के लिए मखसूस कॉरिडोर की तकमील को 21वीं सदी के भारत के लिए एक तारीखी हुसूलियाबी बताया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज शाम मुंबई में आलमी फिनटेक फेस्ट GFF 2026 का इफ्तिताह करेंगे और खिताब करेंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान से मुतालिक कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पर 2019 के एक हतके इज्जत मामले में समन वापस लेने से इनकार कर दिया है। IMD ने बिहार, मशरकी मध्य प्रदेश, मशरकी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मगरबी बंगाल और मुल्क के शिमाल मशरकी हिस्सों में आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। और आज अहमदाबाद में भारत ने 2026 आलमी पैरा तीरंदाजी सीरीज में सोने के 2 तमगे जीते हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज वडोदरा में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा, जिनकी लागत 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। वजीर आजम ने माल लाने ले जाने वाली मखसूस मगरबी राहदारी के 3 अहम हिस्सों को मुल्क के नाम वक्फ किया। वजीर आजम ने न्यू सनंत, न्यू मकरपुरा, न्यू उम्बरगांव और न्यू GNPT से मालबरदार रेलगाड़ी को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ साथ टांडा रोड और वडोदरा के दरमियान एक नई पैसेंजर ट्रेन का भी आगाज किया। ये ट्रेन अलीराजपुर के दूरदराज के कबायली इलाकों को कौमी रेल नेटवर्क से जोड़ेगी। वजीर आजम मोदी ने एक बड़े इज्तम से खिताब करते हुए भारत के ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स शोबे को तेजी से तब्दील करने की बात भी उजागर की। उन्होंने मालबरदारी की मखसूस राहदारियों की तकमील के लिए कहा, जिनकी तवालत 2,800 किलोमीटर से ज्यादा है, जो 21वीं सदी के भारत की एक तारीखी हुसूलियाबी है और मुल्क के कामकाज के बदलते हुए कल्चर का एक सबूत है।
2: आज ईस्टर्न और वेस्ट

0: डेडिकेट फिट कॉरिडोर देश के व्यापार कारोबार का मुख्य आधार बन रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तेजी से विकसित होते भारत की जीवन रेखा है। इसने भारत के ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का कायाकल्प कर दिया है।
1: वजीर आजम ने इशारा दिया कि अगरचे इस प्रोजेक्ट का तसव्वुर 2006 में पेश किया गया था, लेकिन इस पर कई साल तक कार्रवाई न हो सकी। इसके बरक्स पिछली दहाई में इस पर तेजी से काम शुरू हुआ और इसकी वजह से लॉजिस्टिक्स के कौमी इको निजाम में पूरी तरह तब्दीली आ गई। आज ये मालबर्दारी की राहदारी तेजी से तरक्की करते हुए भारत के लिए अशद जरूरी हो गई है। बाद में वजीर आजम नवसारी का दौरा करेंगे और वहां बीजेपी के नए एआई से लैस हाईटेक दफ्तर का इफ्तिताह करेंगे। मुंबई में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का इफ्तिताह करने वाले हैं, जिसका शुमार दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे मुअस्सर सालाना फिनटेक कॉन्फ्रेंसेस में होता है। चार रोजा ये फेस्ट 11 सितंबर को इख्तिताम पजीर होगा। तफसील हमारे नामा निगार से।
2: ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का ये सातवां एडिशन है जो आज मुंबई में शुरू हो रहा है। इस फेस्ट का आगाज 2020 में किया गया था। GFF कायदाना प्लेटफॉर्म का एक बैन अलावामी तस्वूर बनकर उभरा है, जहां पॉलिसी साज, जाब्तकार, मरकजी बैंकों से वाबस्ता शख्सियतें, माली इदारे, फिनटेक टेक्नोलॉजी से मुतालिक कंपनियों से वाबस्ता शख्सियतें, सरमायाकार तालीमी इदारों से वाबस्ता शख्सियतें और दीगर आलमी मुतालिका फरीकैन मुस्तकबिल की मालियात को शक्ल देने के लिए यकजा होते हैं। मुंबई से प्रार्थना की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं माजिद अली।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज कांग्रेस मेंबर पार्लियामेंट राहुल गांधी को जारी किए गए समन को मुस्तरद करने से इनकार कर दिया है। ये समन 2019 में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी की रायजनी पर हतके इज्जत के एक केस में जारी किया गया था। जस्टिस एनआर बोरकर की इनफरादी बेंच ने जनाब गांधी की ये दरखास्त मुस्तरद कर दी, जिसमें मैजिस्ट्रेट की एक अदालत के उस हुक्म को चैलेंज किया गया था, जिसके तहत राहुल गांधी के खिलाफ अदालती कार्रवाई शुरू की गई थी। हाईकोर्ट ने अलबत्ता मैजिस्ट्रेट की अदालत में इस समात को 6 हफ्ते तक मुलतवी करने की 2021 की हिदायत को बरकरार रखा। इस तरह जनाब गांधी को सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने की मोहलत मिल गई है। इस केस का ताल्लुक राफेल सौदे के बारे में जनाब गांधी की 2018 की रायजनी पर एक हतके इज्जत की शिकायत से है। उनके वकीलों ने इसे एक बेजा शिकायत करार दिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज मशहूर गुलूकार और आसाम कानून साज असेंबली के साबिक मेंबर भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका के 100वें यौमे पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि डॉक्टर हजारिका की आवाज ने आसाम और शिमाल मशरक की रूह को पूरे मुल्क तक पहुंचाया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी मशहूर गुलूकार और आसाम कानून साज असेंबली के साबिक मेंबर भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका को उनके यौमे पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। दिफाई साजो सामान की सरकारी खरीद से मुतालिक काउंसिल ने दिफाई अफवाज के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की तजवीजों को मंजूरी दे दी है। हमारे नामा निगार ने बताया है कि वजीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत में काउंसिल की मीटिंग के दौरान ये मंजूरी दी गई। आज खानगी का बैनुल अक्वामी दिन है। ये दिन अफराद, बिरादरियों और मुआशरों के लिए खानदगी की अहमियत की याद दहानी कराने के लिए हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है। इस साल खानदगी के बैनुल अक्वामी दिन का मौजू है अवाम के लिए खानदगी, कुर्राए अर्ज और खुशहाली। पेश है एक रिपोर्ट।
3: 1966 में अपने आम इजलास के दौरान यूनेस्को ने बैनुल अक्वामी यौम खानदगी का आगाज किया था। ये दिन तेजी से बदलती हुई दुनिया में खानगी में इजाफा, मौजूदा और उभरते हुए चैलेंजों की गहरी समझ और मुस्तकबिल के एजेंडों का जायजा लेने का मौका फराहम करता है। बैनुल अक्वामी यौम खानगी 2026 मनाने के लिए यूनेस्को मेक्सिको की हुकूमत के साथ मिलकर मेक्सिको में अवाम के लिए खानगी, कुर्रा अर्ज और खुशहाल के मौजू पर एक आलमी तकरीब का इनेकाद कर रही है। इस प्रोग्राम में यूनेस्को बैनुल अक्वामी खानगी इनामात भी पेश किए जाएंगे। 2015 से खानगी में इजाफा, पायदार तरक्की और अमन कायम करने में इसके तआवुन का जायजा लेना आलमी इजलास का अहम मकसद है। PS विष्णु की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।
1: अक्वामे मुत्तहिदा के इंसानी हकूक के माहिरीन ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में बलोच शहरी इमरान अली की ताकत के बल पर मुबैना गुमशुदगी और

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੌਜੀ ਵੀਰਾਂ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿਨ ਦੇ 2:15 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਕਨਕਲਤਾ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण किया। कहा, भारत उन्नत रेलगाड़ियों और मेट्रो कोच के निर्माण का वैश्विक केंद्र बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री आज शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ वर्ष 2019 में दायर मानहानि मामले में जारी समन को रद्द करने से इनकार किया। बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान। और अहमदाबाद में भारत ने विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे WFDC के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने भारत के परिवहन और लॉजिस्टिक क्षेत्र में तेजी से बदलाव का उल्लेख किया।
2: इस वर्ष लाल किले से मैंने विकसित भारत के लिए संकल्प की सप्तधारा का आह्वान किया है। इस सप्तधारा में एक धारा गति शक्ति की भी है। आज 2,800 किलोमीटर से अधिक का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट पूरा हो गया। ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि इस परियोजना की परिकल्पना वर्ष 2006 में की गई थी, लेकिन इस दिशा में आगे प्रगति नहीं हुई। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में इस पर तेजी से हुए काम ने देश के लॉजिस्टिक तंत्र को

0: पूरी तरह बदल दिया है, जो तेजी से विकसित होते भारत की जीवन रेखा है।
1: आज ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर देश के व्यापार कारोबार का मुख्य आधार बन रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तेजी से विकसित होते भारत की जीवन रेखा है। इसने भारत के ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का कायाकल्प कर दिया है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है और अब अपनी उन्नत रेलगाड़ी और मेट्रो कोच का निर्माण कर रहा है। चिप से शिप तक स्थानीय उत्पादों के दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि देश के अंदर संपूर्ण और आत्मनिर्भर आपूर्ति श्रृंखला तैयार की जा रही है।
1: साथियों, अब भारत चिप से लेकर शिप तक निर्माण की एक नई गाथा लिख रहा है, यानी पुर्जे भी हमारे और प्रोडक्ट भी हमारा। आत्मनिर्भरता की पूरी चेन भारत में ही बनेगी।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने न्यू सानंद, न्यू मकरपुरा, न्यू उमरगांव और न्यू जेएनपीटी से मालगाड़ी सेवाओं को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके अलावा उन्होंने टांडा रोड और वडोदरा के बीच नई यात्री रेल सेवा को भी झंडी दिखाई। ये सेवा अलीराजपुर के दूरदराज के आदिवासी क्षेत्रों को राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जोड़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने 9,700 करोड़ रुपए से अधिक की 3 रेल विस्तार परियोजनाओं और लगभग 1,780 करोड़ रुपए की 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इसका उद्देश्य गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करना है। उन्होंने गुजरात सरकार की 2,600 करोड़ रुपए की विभिन्न नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नवसारी भी जाएंगे, जहां वे भारतीय जनता पार्टी के नए एआई सक्षम और अत्याधुनिक कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे।
2: ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का 7वां संस्करण आज से मुंबई में आयोजित किया जा रहा है। जीएफएफ वर्ष 2020 से ही नीति निर्माताओं, नियामकों, केंद्रीय बैंकों, वित्तीय संस्थानों, फिनटेक और प्रौद्योगिकी कंपनियों, निवेशकों, शिक्षाविदों और अन्य वैश्विक हितधारकों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में उभरा है। जीएफएफ 2026 का विषय है प्रभाव डालने की क्षमता, एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन, क्वांटम, समावेशी वित्त के लिए विश्वसनीय जुड़ी हुई वैश्विक प्रणालियां। जीएफएफ ने इस वर्ष एजेंटिक एआई, प्रोग्रामेबल फाइनेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसे विषयों पर चर्चा आयोजित की गई है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के एक लेख को आज साझा किया। सोशल मीडिया पर पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि मातृ वंदना योजना के 10 वर्ष और पोषण माह पर आधारित ये लेख आंगनवाड़ी व्यवस्था को जन आंदोलन बनाने के संदेश को दर्शाता है। महिला और बाल विकास मंत्री ने अपने लेख में कहा कि आंगनवाड़ी समाज से अलग कोई व्यवस्था नहीं है, बल्कि ये हमारे आसपास के समुदाय का अभिन्न हिस्सा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 3 दिवसीय दौरे पर श्रीलंका जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि दीर्घकालिक साझेदारी और गहरे ऐतिहासिक तथा दशकों से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण श्रीलंका भारत की पड़ोसी पहले नीति और महासागर संबंधी पहलों के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण साझेदारों में से एक है। रक्षा मंत्री श्रीलंका में रहने वाले भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारे वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
3: अपडेट रहे, आगे रहे। expert@airnewshindi और इंस्टाग्राम पर एआईआर न्यूज अलर्ट को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनकी टिप्पणियों को लेकर वर्ष 2019 के मानहानि मामले में जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति एनआर बोरकर की एकलपीठ ने श्री गांधी की याचिका को खारिज किया। याचिका में उन्होंने मैजिस्ट्रेट अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसके अंतर्गत उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई थी। हालांकि उच्च न्यायालय ने मैजिस्ट्रेट के समक्ष सुनवाई को 6 सप्ताह के लिए स्थगित करने के अपने

0: 2021 के निर्देश को बरकरार रखा। ये मामला रफाल सौदे पर राहुल गांधी की वर्ष 2018 की टिप्पणियों को लेकर दायर मानहानि की शिकायत से जुड़ा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत सभी कॉलेजों में छात्रावास की सुविधा की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से आज इनकार कर दिया। न्यायालय ने कहा है कि इस याचिका को सुनवाई के लिए कल स्वतः सूचीबद्ध किया जाए। दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस के पास सत्य निकेतन में पीजी इमारत ढहने के बाद ये याचिका दायर की गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में भवन ढहने की घटना में घायल हुए लोगों से मिलने के लिए आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का दौरा किया। संवाददाताओं से मुख्यमंत्री ने कहा कि इस घटना में 7 लोगों की मौत हो गई है जबकि 12 घायलों को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि उन्होंने घायल छात्रों के अभिभावकों से भी मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें सर्वोत्तम चिकित्सा देखभाल प्रदान की जाएगी।
1: सारी स्थिति को देखते हुए हमने पेरेंट्स को भी इंश्योर किया है कि उनका इलाज पूरी तरीके से अच्छा हो और सरकार उसमें उनकी पूरी मदद करेगी, हर तरह की सहायता करेगी और जो बच्चे का या लेबर का जो परिवार है उनको हम हर तरह की आर्थिक मदद भी करेंगे और सभी पेरेंट्स से हम टच में हैं, किसी भी तरह की कोई जरूरत की घड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने नशीले पदार्थों की समस्या से निपटने में कोई ठोस कदम न उठाने के लिए आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की आलोचना की है। नई दिल्ली में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के सामने ड्रग माफिया का पूरा तंत्र फल फूल रहा है और फिर भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। श्री भाटिया ने संगरूर जिले की घटना का जिक्र किया जिसमें एक निवासी ने राज्य के मंत्री हरपाल सिंह चीमा से नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया था, लेकिन आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं ने उसे कथित रूप से धमकाया और मंत्री से माफी मांगने को कहा था। इसके बाद उस निवासी ने आत्महत्या कर ली थी। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में मणिपुर के संगीतकार चोंगथाम विक्रम सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंधिया ने कहा कि पूर्वोत्तर के प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा और गरिमा सर्वोपरि है। उन्होंने दिल्ली पुलिस से त्वरित कार्रवाई और गहन जांच सुनिश्चित करने का आग्रह किया ताकि दोषियों को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त विनीत कुमार ने बताया कि इस मामले में कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया है।
2: श्री विक्रम सिंह जी मूल रूप से मणिपुर के निवासी है। वो अपनी गली में एकत्रित कुछ लड़कों के साथ उनकी कहासुनी हुई शोर शराबे के ऊपर। उसके बाद वो कहासुनी के बाद उन दोनों पक्षों में हाथापाई हुई जिसमें इनको कुछ चोटें आई। इनकी फैमिली द्वारा इनको हॉस्पिटल ले जाया गया जहां पर ड्यूरिंग ट्रीटमेंट सुबह 7 बजे के करीब इनकी डेथ हो गई। पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करते हुए अभी तक हमने इसमें टोटल 7 लोग अरेस्ट करे हैं और एक माइनर को अप्रिहेंड किया।
0: तमिलनाडु विधानसभा में वाणिज्य कर और पंजीकरण मंत्री डी लोकेश तमिल सेल्वन ने तमिलनाडु वस्तु एवं सेवा अधिनियम में और संशोधन करने वाला एक विधेयक प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य केंद्रीय अधिनियम के साथ एक रूपता बनाए रखने के लिए अधिनियम में संशोधन करना है। तमिलनाडु विधानसभा ने आज केंद्र सरकार से समुदायों और उनकी सामाजिक स्थिति की जानकारी के लिए जाति आधारित जनगणना को स्पष्ट रूप से शामिल करने का आग्रह किया। सदन में प्रस्ताव पर बोलते हुए सदस्यों ने सुझाव दिया कि जस्टिस पार्टी का जनगणना मॉडल एक व्यापक मॉडल है। दिल्ली यातायात पुलिस ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू चुनाव के सिलसिले में आज छात्र संवाद कार्यक्रम और चुनाव प्रचार को देखते हुए यातायात परामर्श जारी किया है। शाम 4 बजे तक नॉर्थ कैंपस के आसपास के इलाकों में यातायात प्रभावित रह सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और यूट्यूब पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने कहा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और तेलंगाना में कल तक बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ तूफान आने की संभावना है। बिहार में

0: गंगा, गंडक, कोसी और सोन समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में कमी आने से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को राहत मिली है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि हालांकि कुछ इलाकों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है।
1: गंगा, गंडक, कोसी, सोन समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में कमी से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को थोड़ी राहत मिली है। गंगा नदी के जलस्तर में बक्सर, भोजपुर और पटना में विभिन्न स्थानों पर 12 से 25 सेंटीमीटर तक की कमी दर्ज की गई है। हालांकि डाउनस्ट्रीम में मुंगेर और भागलपुर के विभिन्न इलाकों में जलस्तर में बढ़ोतरी जारी है। प्रदेश के 13 जिलों में 27 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की विकट स्थिति का सामना कर रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वैशाली और सारण जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न सामुदायिक रसोई केंद्रों और राहत शिविरों में जाकर लोगों का हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत के काम और तेज करने के निर्देश दिए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
0: अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी 2026 में भारत ने आज 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता है। हरविंदर सिंह और विजय सुंडी ने पैरा रिकर्व पुरुष

0: सामुदायिक रसोई केंद्रों और राहत शिविरों में जाकर लोगों का हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत के काम और तेज करने के निर्देश दिए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
1: अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी 2026 में भारत ने आज 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता है। हरविंदर सिंह और विजय सुंडी ने पैरा रिकर्व पुरुष डबल्स के फाइनल में स्लोवाकिया को 6-2 से हराकर लगातार तीसरी बार खिताब अपने नाम किया। पैरा महिला रिकर्व स्पर्धा में पूजा जत्यान और भावना चौधरी को चीन के हाथों 6-0 से हार के बाद रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने चीन में एशिया कप के पूल मैच में आज दक्षिण कोरिया को 7-3 से हराया। कप्तान अनमोल इक्का ने 2 गोल किए। भारत के अब 3 मैचों से 7 अंक हो गए हैं। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज दोपहर के कारोबार में गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 548 अंक गिरकर 75,585 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री आज शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ 2019 में दायर मानहानि मामले में जारी सम्मन को रद्द करने से इनकार किया। और अहमदाबाद में भारत ने विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। दिन दे 2:30 बज रहे ने। लव सुनो प्रोग्राम रंगली धरती। आज इस प्रोग्राम च सुदागर लाल कोमल ते साथियों को कुछ पेटा सुनोगे। सुनदियां प्रोना तो गाई हुई पेट।

ज्योति से मिटे अंधेरे, तेरी कृपा से खिले फूल। जब जो पुकारा दिल ने तुझको, हम सारे सुख चैन गए भूल। तुसी सुन रहे हो माता दे पेटन सुभागर मल कोमल दे साथियों को लो आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तों।

ते लो जी, इस प्रोग्राम की शुरुआत करदे आं इस प्यारे जी गीत दे नाल। ते तुहाडा अपना प्रोग्राम है, ते उस तो पहला गीत सुनाने तो पहला मैं दस देनी कि इस प्रोग्राम विच शिरकत किस तरह कर सकदे हो। ते जी बिल्कुल, पोस्ट कार्ड दे राही तुसी पहुँच दे हो इस प्रोग्राम विच। प्रोग्राम दा पता नोट कर लो। प्रोग्राम दा नाम चिट्ठियां मिठियां, मार्फत स्टेशन डायरेक्टर आकाशवाणी जलंधर, पिन कोड 144001। ते ला जी, मैं तुहाडी दोस्त कृतिका कौशल, ते मेरे वल्लों सारिआं नूं नमस्कार, आदाब ते सति श्री अकाल। की हाल चाल है, ठीक है होना? ते लो जी, शुरुआत करदे आं प्यारे जी शुकराने दे नाल, ते आवाज़ नहीं अमृत मान दी। सुन रहे प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां।

सुन रहे प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां अपनी दोस्त कृतिका कौशल दे नाल। ते लो जी चिट्ठियां पहुंच चुकियां ने ढेर सारियां मेरे कोल। ते सब तो पहला चिट्ठी आई है लिख रहे ने निमृत खेरा दी आवाज़ विच कोई भी गीत सुना दिता जावे। लिखण वाले ने आदर्श नगर मलौट तो राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मैंडी, सौरभ शाइना ते निवान शर्मा। अपरा सिटी तो लिख रहे ने रूप लाल नाहर, सुभाष, सोमा, अमरजीत, अंबा, परमिंदर, राजा। कोई भी गीत सुनना चाहते ने। जिला फजलका पिंड मुलिया वाले तो लिख रहे ने परवीन काटपाल, आशा, दीक्षा, जन्नत, गुरलीन ते निशु काटपाल। नाभा तो

0: सुन रहे प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां, लिख रहे ने मोलापुर दाखा मंडी तो राजेश जैन, अरुणा, दीपक, गौतम, बिट्टू, मट्टू, नगीना, सिया, सारिका, अरहमत, सुरभी ते मनोज। सैक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ तो लिख रहे ने टी डी मल्होत्रा, रितिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप। कालका तो लिख रहे ने शुभ चंद्र बजाज, साहिल ते बिट्टा बजाज। कोटली कलां पंजाब तो यादविंदर सिंह, सुखविंदर, रविंदर, मनजीत ते गुरजोत। जिला फिरोजपुर तो लिख रहे ने जसजीत सिंह, टहल सिंह, बूटा सिंह, अजीत, हरनेक जीत सिंह, कुलदीप ते सारे साथी। पिंड कैरों कलां जिला तरन तारण तो लिख रहे ने गुरदर्शन, लाल चलोत्रा, सुनीता, शमी, रजनी, आकाशदीप, अनहद ते पोतरा गुणशबद। कोई भी गीत सुनना चाहते ने कुलविंदर बिला की आवाज़ में। गुरु रविदास नगर मलौट तो लिख रहे ने नानक चंद जाजोरिया, बंटी कुमार, सुनील कुमार, विजय कुमार ते रवि कुमार। धर्मशाला पेंड कोटली तो लिख रहे ने सीता, राम केसरी, जगरूप, किंदा, केबी, काला, डॉक्टर जसपाल सिंह, सोमा ते नाल इन्हां दे सारे साथी। ते सुनाने जे इन्हां नूं कुलविंदर बिला दी आवाज़ विच गीत है। तुसीं सुन रहे प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां।
1: सा सा सुनारी

सुन रहे प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां। लिख रहे ने सानू मंडी गोलूवाला राजस्थान तो लिख रहे ने ब्रिजलाल चौहान ते नीरज कुमार ते सुनना चाहते ने गुरदास मान की आवाज़ विच गीत छल्ला। पेन गुणाणा जिला फजिलका तो कुलवीर सिंह, परमजीत कौर, बेटा गुरप्रीत सिंह, बेटी मनप्रीत कौर ते सारे साथी। मुलापुर मंडी तो कृष्ण गोपाल शर्मा, राज शर्मा, मंजू शर्मा, आशीष, बिट्टू जैन ते दीपक जैन। पुरानी मंडी मुलापुर तो राजेश जैन, अरुणा, गौतम जैन, रसगुल्ला ते नगीना जैन ते सारे साथी। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार तो ताज मुहम्मद अंसारी, गुलाम साहब राही ते मेरा जहां चाली वाला जट्टा तो लिख रहे ने साहिब सिंह, सुखजीत कौर, बलविंदर, हरजिंदर, गिदड़बाहा तो मनजीत तनेजा ते प्रवीण तनेजा। मॉडल टाउन करनाल तो लिख रहे ने सुधीर नूतन, शशि बिल्ला, किरण थापर, हरिपाल कौर, संदीप गुगलानी, आशा, सुनीता ते सारा परिवार। पेंड आजम वाला तहसील फाजिलका तो मोहन सिंह बोक, निशान सिंह, सोहन, सीरत, कीरत, दादी, जसवंत कौर ते सारे साथी। इन्हां सारे नूं सुना रहे हैं लखविंदर वडाली दी आवाज़ विच ये गीत है। पर साडे दोस्त ने सानू फरमाइश कीती सी छल्ला गुरदास मान दी आवाज़ विच सुनाउण दा, क्योंकि इस गीत दी भी सानू जो है फरमाइश आई है ते अगले खत पढ़ के एक गीत जरूर प्ले किया जाएगा। फिलहाल गुरदास मान की आवाज़ विच गीत जो है पहली चिट्ठी ने फरमाइश भेजी सी, सुन दें।

सुन रहे प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां। तो लो जी, चिट्ठी आई है जी लिखण वाले ने। चुगला बाजार समाणा तो संगीता जिंदल, पप्पू राजा खुशदिल ते हसमुख जिंदल, साधुल शहर तो ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश ते वेद प्रकाश चौहान, फ्रेंड्स कलोनी करनाल तो लिख रहे ने गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत, मनविंदर सिंह पांधा ते सारे साथी। रायन तो लिख रहे ने सानू सोलंकी, रंजीत, परमजीत कौर, विष्णु देव सोलंकी, राजवीर, रमन, जस्सू ते इना दे नाल जगवीर ते सारा परिवार। अरायण तो ही लिख रहे ने डॉक्टर बनवारी, जयपाल, बिमला, सोनू, ममता, मोक्ष, दिशा, सुशांत ते विक्रम जयपाल। पटेल नगर मलौट तो लिख रहे ने डॉक्टर रमेश कुमार जजोरिया, गीता रानी, गगनदीप ते बेबी आरजू। सहारनपुर तो लिख रहे ने सुरेश नरंग ते आशा नरंग। ते इन्हां सारे नूं सुना रहे हैं जी लखविंदर वडाली दी आवाज़ विच गीत है, तुसी सुन रहे प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां।

सुन रहे जी प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां ते इस प्रोग्राम विच सिर्फ ते सिर्फ 8 मिनट रह गए ने ते ठीक 4 बजे तुसी सुनोगे प्राइमरी चैनल तो प्रोग्राम फिलहाल चल रहा प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां गुरमीत सिंह मीता लिख रहे ने साउथ एक्सटेंशन नवी दिल्ली तो लिख रहे ने जिला फजलका तो पप्पू मुनीश अमरोई बाई हरप्रीत कौर बलजीत कौर ते पोतरे गुरनूर प्रनीत ते बबलू जिला श्री फतेहगढ़ साहिब तो लिख रहे ने बलविंदर बिल्ला मधुपुरी राज कौर ज्योति गोल्डी रामलाल बब्बू टिवाणा ते सारा परिवार पिंड पजौनिया जिला जालौन यूपी तो लिख रहे ने सतेंद्र कुमार आदर्श ते अलौकिक पिंड खाने दी टा मलौट तो शमशेर सिंह जसविंदर कौर करण प्रताप मनप्रीत कौर तरनवीर ते मनताज जिला रतलाम मध्य प्रदेश तो लिख रहे ने बलवंत कुमार वर्मा राजूबाई माया वर्मा शोभा राहुल ज्योति अतुल पायल प्रियांश ते ऋषि वर्मा लिख रहे ने सानू फजलका तो अमन वर्मा रमन वर्मा दिव्यांश डॉक्टर मदन लाल ते सारा वर्मा परिवार ते इन्हां सारे नूं सुना रहे हां अमरिंदर गिल दी आवाज़ विच गीत है तुसी सुन रहे प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां

जी बिल्कुल, 4 मिनट साढ़े को रह गए ने ते चिट्ठियां भी पढ़निया ने तुहाडियां। लिख रहे ने उमरखेड़ महाराष्ट्र तो, अभिजीत श्रीमती सरिता प्रिंस बदलापुर तो, सिद्धांत प्रणीता अर्जुन आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर तो, वैशाली सुमीत ते ध्वनि कस्बा बराड़ा जिला अंबाला तो, रवि कुमार रंजीत कौर प्रियंका जयप्रकाश राहुल नूर नमन सिमरत गुरकीरत गुरशबद ते राहुल। कोई भी गीत सुनना चाहते ने? लिख रहे ने पिंड निथाणा तो हरजिंदर छिंदा जसवीर रेखा गगन सोनी सीता ते गीता कृष्णा नगर टीवी टावर सैमी नरी हिल्स नागपुर महाराष्ट्र तो। लिख रहे ने नाना डोंगर दीवे रमाताई सीमाताई रीमाताई दीक्षाताई राहुल ते सारा परिवार फरीदकोट तो सतनाम सिंह किल गुरिंदर गुरली ते सारा परिवार पंचकुला सैक्टर 9 तो आशु चुग अश्विनी गोविंद टोनी लव ते राधे। लिख रहे ने पिंड जिला नवाशहर तो लिख रहे ने गगनदीप थांदी तृप्ता कुमारी डॉक्टर प्रियंका डॉक्टर प्रशांत डॉक्टर प्रियम बेबी वामिका ते बेबी वाणी। बागा पुराना तो लिख रहे ने सतनाम सिंह रखरा अमरजीत कौर पोतरा तेग फतेह सिंह पोतरी जसगुण रखरा ते सारा परिवार ते इन्हां सारे नूं सुना रहे हां। नवीन हांडा दी आवाज़ विच गीत है, तुसीं सुन रहे हो प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां। इस गीत दे नाल अपनी दोस्त कृतिका कौशल नूं दिओ इजाजत किसी होर ते सफर ते आके तुहाडे नाल रूबरू होवांगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखियो।

के थोड़ी बेहोश होई के कौन बने ते कौन बनाए पति होश आई ते फिर ओ कहन लगी वे तेनू किसने है पढ़ाई पति।

वडे किया वड्याईया, किछ कहना कहन न जाई, सो करता कादर करीम, दे जिया रिजक संभाहे। कथन अनुसार प्रभु सृजनहार दे गुण बयान नहीं किते जा सकते, ते संसारी जीवां दे अवगुणा दा कोई अंत नहीं है। समझ ही नहीं आती कि इस बेअंत संसार रचना अंदर जीवां दी मां अते प्यो कौन ने ते कित्थों आए। माता दी उदर अग्नि अते पिता दे बिंब विचों उपजिया जीव किस मकसद लई रचया गया, इस सारी रचना दे रचायता दी अजीब ही सोच है अते मौज है। इस मनुखी जामे तो पहला रुखां बिरखां पशुओं दियां जोनियां भी उससे दी उपज है, कदे सप्पां कदे पंखियां दी जून। कुकर्म करन वाले जीव तंदियां विच गलतान ने, इना सबना नू आप प्रभु ही देख रहा है, उस तो कोई ओला नहीं। तीर्थां दे कंडे खंड ब्रह्मांड ए सब कुछ दृष्टमान है। जेकर व्यापारी दी न्याई लेखा जोखा कीता जाए तां इस वणज दा वणजारा दिल विच ही महसूस कर रहा है। गल की जिन्ना सागर विच नीर है उतने ही औगणा नाल भरिया होया साडा मन है। हे प्रभु, आप ही दया करके कृपा करो ते इस डुबदे हुए पत्थर नू तारो। मेरा हिरदा विकारां दी अग्नि नाल तप रहा है ते मेरे अंदर तृष्णा रूपी फट पौन वाली कटार चल रही है। पर नम्रता सहित बेनती है कि जिड़ा मनुख रब्बी रजा नू पछाण लेंदा है उसके अंदर हर वक्त आत्मिक आनंद बनिया रहिंदा है। राग गौड़ी चेती विच बाबा नानक जी का फरमान है, मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे, कहे न जानी औगण मेरे। सरवण करदे हां भाई तरलोचन सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया

मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे, कहे न जानी औगण मेरे। इस शब्द का गायन किया सी भाई तरलोचन सिंह ते उना दे रागी जत्थे ने। सच्चे गुरु की उस्तत करन लई जीव की बुद्धि तुच्छ प्रतीत हुंदी है, उस तो ता बलिहारे ही जाया जा सकता है। सोरठ राग विच उचारित शब्द विच पंचम गुरदेव फरमान करते ने कि मैनू वड्डे भागा नाल पूरा सच्चा गुरु मिल गया है ते मेरा मन रोशन हो गया है। उस वर्गा होर कोई नहीं है, इस करके मैनू ता उसे ते ही भरोसा है। मैं अपने सच्चे गुरु तो वारने हाँ, जिस दे मिलाप सदका मैनू लोक परलोक दे सुख अते आत्मिक आनंद की प्राप्ति हुई है। करण करावन हार स्वामी घट घट की जानन वाला है, प्रभु ही मेरा साई है। उसकी चरण शरण प्राप्त करके निर्भयता प्राप्त हो गई है ते उसका नाम ही जीवन का आधार है। काल दे प्रभाव तो मुक्त प्रभु दे दर्शन ही सकारथ हन। जो प्रभु अज भी है पहला भी सी ते भविख विच भी होएगा, उही अपनी प्रीत दे रंगा विच रंग के अपने प्यारे जना नू गल नाल लाई रखदा है। उस वड्डे प्रभु दियां वड्याईयां भी अणगिणत हन अते शोभा भी हैरान कर देण वाली है। उसे ने ही मेरे सारे कारज रास कर दिते हन। ऐसे पूरन गुरु दा मिलाप मैनू

प्राप्त हो गया है। इस प्रीत मिलनी सदका मेरे सारे दुख बिनस गए हन। अपने सतगुर कै बलिहारै आगे सुख पाछे सुख सहजा कर आनंद हमारे। सरवण करदे हां इस शब्द का कीर्तन भाई हरजिंदर सिंह होरां दे रागी जत्थे पास।

0: अपने सतगुर कै बलिहार है, आगे सुख पाछे सुख सहजा, कर आनंद हमारे। इस शब्द गायन कीता सी भाई हरजिंदर सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने। हुण सरवण करदे हां इस शब्द दी व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी जसबीर सिंह।
1: ए पावन शब्द धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज दा उचारण कीता होया राग सोरठ विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे मुबारक अंग 609 उपर सुवायमान है। इस पवित्र शब्द दी विचार इस प्रकार है। धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज असां संसारी जीवां नूं समझाउंदे हन कि मैनूं वड्डी किस्मत नाल कामल भाव पूरा गुरु मिल गया है। सतगुरु जी दे मिलाप दी बरकत नाल मेरे मन विच आत्मक जीवन जीवन दी सोझी पैदा हो गई है। मैनू हुण अपने मालक प्रभु जी दा सहारा मिल गया है। जिस सब दे मालक प्रभु जी दी कोई भी जीव बराबरी नहीं कर सकता। इस परथाए शब्द दे आरंभ दे बचन सतगुरु अलाउंदे हन। गुरपूरा भेटियो वडभागी मने भया परगासा कोई न पहुंचन हारा दूजा अपने साहिब का परवासा। कल सहार पठ धन गुरु अंगद देव जी महाराज जी की उस्तत करदे हां बचन करदे हन कि धन गुरु अंगद देव जी जिस मनुख उत्ते अपनी कृपा दृष्टि करदे हन उसनों आत्मक जीवन जीवन का सलीका बख्शदे हन। उस दे सारे पाप ते पापां दी सारी मैल दूर कर देंदे हन। अते काम क्रोध लोभ मोह हंकार ये सारे उस दे काबू विच कर देंदे हन। गुरु अंगद देव जी दे मन विच सदा आत्मक सुख वस रहा है, जिस दे कारण गुरु संसार दा दुख दूर करदा है। गुरु नौ निधियां दा दरियाओ है। गुरु असां संसारी जीवां दे जन्मां जन्मां दे माड़े कर्मां दी मैल कालख धो देंदा है। ऐसे गुरु अंगद देव जी नूं दिन रात आत्मक अडोलता अते प्रेम विच टिक के सेवना चाहिदा है। ऐसे सतगुरु दा दर्शन कीतियां जन्म मरण दा दुख कटिया जांदा है। पट जी इस प्रथाए बचन करदे हन, अमै दृष्ट शुभ करै हरै अग पाप सकल मल, काम क्रोध अर लोभ मोह वस करै सबै बल, सदा सुख मन वसै दुख संसारै खोवै, गुर नाम नि दरियाओ जन्म हम कालख तोवै, सो कहो टल गुर सेवियै एहनस सहज सुभाए, दर्शन परसै गुरु के जन्म मरण दुख जाए। विचार अधीन शब्द विच धन गुरु अर्जन देव जी फुरमाउंदे हन कि मैं अपने ऐसे गुरु जी तों कुर्बान जांदा हां जिस पूरे गुरु जी दी कृपा नाल मेरे हिरदे रूपी घर विच आत्मक आनंद बनिया रहिंदा है। इस लोक विच भी आत्मक अडोलता दा सुख मैनू प्राप्त हो गया अते परलोक विच भी ए आत्मक आनंद बनिया रहण वाला है। अपने सतगुर कै बलहारै आगै सुख पाछै सुख सहजा, कर आनंद हमारे। रहो। विचार अधीन शब्द विच गुरु पंजवें पातशाह बचन करदे हन कि ओ परमात्मा परमेश्वर ऊपर मैनू निश्चा हो गया है, जो सारी सृष्टि दा सिरजनहार है, सब जीवां दे दिलां दी जानण वाला अंतरजामी है। ओही परमात्मा मेरे सिर उत्ते राखा है। जद

प्रीत बनी, तोरी न टूटे छोरी न छूटे, ऐसी माधो खिंचतनी। इस शब्द गायन की तसी आशा भोंसले अते लता मंगेशकर होरा ने।

0: बही, जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: अस आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। हुण तो कुछ ही पलों च यानी 6 बजे तुसी सुनोगे हिंदी च समाचार साढ़े दिल्ली केंद्र तो बस कुछ ही पलों च।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाली ब्रिक्स बैठक के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत यूक्रेन और रूस दोनों के संपर्क में है और संघर्षों को रोकने में मददगार सुझावों और विचारों पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध समाप्त करने में किसी भी तरह मदद कर सकता है तो वो इसके लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि भारत चीन सीमा मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की बैठक अरुणाचल प्रदेश के वाचा और चीन के दमाई में हुई है।
1: अगस्त 2025 और अगस्त 2026 में भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच बनी सहमति और उसके बाद मई और अगस्त 2026 में जो मीटिंग हुई थी बीजिंग में और दिल्ली में WMCC की बैठकों में, उस चर्चाओं पे आधारित वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की पहली फ्लैग मीटिंग 6 सितंबर 2026 को अरुणाचल प्रदेश के वाचा में और 7 सितंबर 2026 चीन की तरफ दमाई में आयोजित की गई।
0: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि दोनों नेता आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। श्री पेस्कोव ने कहा कि रूस भारत को वैश्विक बहुमत में एक महत्वपूर्ण देश मानता है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान AI एक प्रमुख मुद्दा रहेगा। इस बीच ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियों के लिए आज शाम 7:45 से रात 10 बजे तक मोटर कारकेट का पूर्वाभ्यास किया जाएगा। इस दौरान भारत मंडपम और आसपास के क्षेत्रों में लगभग 35 से अधिक सड़कों पर यातायात नियंत्रित किया जाएगा और 22 स्थानों पर मार्ग परिवर्तित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री मोदी ने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि ये गलियारा विकसित भारत की जीवन रेखा है।
2: आज ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर देश के व्यापार कारोबार का मुख्य आधार बन रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तेजी से विकसित होते भारत की जीवन रेखा है। इसने भारत के ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का कायाकल्प कर दिया है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 22 सितंबर को गुजरात के एकता नगर में 72वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए अभिनेता ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का पुरस्कार दिया जाएगा। यामी गौतम को आर्टिकल 370 के लिए सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिन की श्रीलंका यात्रा पर कोलंबो पहुंचे। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा और समुद्री सहयोग को और मजबूत करना है। इस दौरान रक्षा मंत्री रक्षा और समुद्री सहयोग साझेदारी को मजबूत करने सहित कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। वे कोलंबो में भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। ब्रिटेन ने भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना को मान्यता दे दी है। भारतीय निर्यातकों के लिए ये बड़ी राहत ब्रिटेन ने कार्बन सीमा समायोजन व्यवस्था के अंतर्गत दी है। अब ब्रिटेन में कार्बन टैक्स के दायरे में आने वाले भारतीय उत्पादों पर भारत में पहले से चुकाए गए कार्बन मूल्य के आधार पर राहत मिल सकती है। इससे भारतीय निर्यातकों को एक ही कार्बन उत्सर्जन के लिए 2 बार शुल्क चुकाने से राहत मिलेगी। बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 555 अंक गिरकर 75,578 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 144 अंक की गिरावट के साथ 23,635 पर दर्ज हुआ। अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला के तीसरे चरण में आज भारत ने 2 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किए। तोमन कुमार और श्याम सुंदर स्वामी ने कंपाउंड टीम स्पर्धा में और हरविंदर सिंह तथा विजय सुंडी की रिकर्व टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: असि आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। इस वेले 6:05 हुए ने। हुण पिछले प्रोग्रामा का फेरफार

हुन तो कुछ समय बाद यानी शाम 6:30 बजे पेश करांगे देहाती प्रोग्राम। आज इस विच काम दियां गल्लां ते निम आधारित कोल बारे डॉक्टर RS चंदी नाल हुई गलबात सुनोगे। 7 बजे किसान वाणी प्रायोजित प्रोग्राम च अज दे सिलसिले होणगे किसान संदेश, किसान समाचार, मंडियां दे भा, सफल किसान यादविंदर सिंह, हल्दी दी काश्त ते मौसम दा हाल। सत बज के 7:40 ते अंग्रेजी वार्ता प्रोग्राम च डॉक्टर आशमीन कौर दी वार्ता सुनोगे सुसाइड अमंगस्ट स्टूडेंट्स कॉजेज एंड प्रिवेंशन। रात 8 बजे पेश करांगे प्रोग्राम जिंदगी हसीन है। रात 9:15 बजे स्पॉट लाइट प्रोग्राम तुसी सुनोगे साडे दिल्ली केंद्र तो। रात 9:30 बजे खेड संसार प्रोग्राम च पद्मश्री बहादुर सिंह ते फीचर सुनोगे। रात 10 बजे समा रहेगा मुख खबरां दा। दस बज के 2 मिनटे शास्त्र संगीत के प्रोग्राम सुर साधना च पंडित शिव कुमार दा संतूर ते वजाया राग सोहनी सुनोगे। रात 10:30 बजे पेश करांगे प्रोग्राम सरगम। रात 11:10 प्रोग्राम सौगात पेश किया जाएगा DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा ते जलंधर केंद्र तो। सो ACG अज प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा दा वेरवा।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मीठा करन लगे हो, नौकरी लागे लग दी है, मुबारका फेरते, पर किते उन्होंने नौकरी देन तो पहला कोई पैसे जमा करवाउन दी गल ता नहीं कही। जे कही है ता फिर जागरूक बनो, ध्यान रखो क्योंकि आजकल ए ठगण दे नवे तरीके ने, क्योंकि नौकरी देन वाले कदे भी पैसे नहीं मांगदे।
3: असी आकाशवाणी दी जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं, हुण सुनदे हां देश गान।

प्रोग्राम है किसान वाणी ते खेती संदेश की गल करिए ता झोने विच पोटाशियम नाइट्रेट दे छिड़काव दी महत्ता है कि झोने विच गोब अवस्था तो लैके फुल लाउण ते दाणे बनण तक दा समा पैदावार निर्धारित करन लई बहुत ही महत्वपूर्ण हुंदा है। इस समय जेकर पौधे नूं लोड़िंदी खुराकी तत ना मिलन तां दाणियां दा भरना प्रभावित हो सकदा है, फोक जां खाली दाणे दी गिनती वध सकती है। पोटाशियम नाइट्रेट 13.0.45 दे छिड़काव राही पौधे नूं नाइट्रोजन ते पोटाशियम पत्तियां राही उपलब्ध हुंदे ने। पोटाशियम पौधे विच पानी दे संतुलन खुराकी तत्तां दी वरतों पौधे दी अंदरूनी क्रियावां नूं सुचारू बनाउण ते दाणियां दे भरन विच सहायता करदा है। पोटाशियम पौधे नूं वातावरणी तनाव दा सामना करन विच वी मदद करदा है। इस लई ढुकवें समय ते पोटाशियम नाइट्रेट दा छिड़काव करन नाल फोक दाणे दी समस्या घटाउण ते भरे होए दाणियां दी गिणती वधाउण विच मदद मिलदी है। ते छिड़काव दा सही समां ते मात्रा है, झोने विच 1.5% पोटाशियम नाइट्रेट 13.0.45 दा छिड़काव गोब अवस्था दौरान करन दी सिफारिश कीती जांदी है। 1 एकड़ लई 3 किलोग्राम पोटाशियम नाइट्रेट नूं लगभग 200 लीटर पानी विच घोल के फसल ते इक सार छिड़काव करना चाहिदा है। छिड़काव करदे समय सावधानियां दा ध्यान रखना चाहिदा है। पोटाशियम नाइट्रेट खाद दी वरतों हमेशा सिफारिश कीती मात्रा अनुसार ही करनी चाहिदी है। सिफारिश तों वध मात्रा दी वरतों करन नाल वाधू लाभ दी बजाय पत्ते नूं नुकसान पहुंच सकता है। दोपहर जां फिर तेज हवा दौरान छिड़काव करन तों गुरेज करना चाहिदा है हमेशा, ते मीह दी संभावना होण ते वी छिड़काव ना करो ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਲ ਪੱਤੇ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਉੱਲੀ ਨਾਸ਼ਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਖਾਦ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਰਤਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਲੇਬਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ

0: एक नया भरोसा मिलता है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि तीन दहाकियों के लंबे इंतजार तो बाद जापान ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग बढ़ा के ए श्रेणी च कर दिता है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट की भूमिका की शलाघा करते हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि यह संभावनावां दे दायरे नूं वधा रहा है।
0: ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में लगातार ये मेरा थर्ड ईयर है। ये हैट्रिक बताती है कि विकसित भारत के लिए आप कितने महत्वपूर्ण है, आपका काम कितना महत्वपूर्ण है। हर बार जब मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे पहले से ज्यादा एनर्जी अनुभव होती है, पॉसिबिलिटीज का दायरा एक्सपेंड होता दिखता है। ये साफ साफ लगता है कि रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, ड्रीम्स और बोल्ड हो रहे हैं और इसलिए विकसित भारत के फ्यूचर को लेकर मेरा विश्वास और मजबूत हो रहा है।
1: पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के वडोदरा विच 35,000 करोड़ रुपए के वख-वख विकास प्रोजेक्टों का उद्घाटन किया ते नींह पत्थर रख्या। प्रधानमंत्री ने पश्चिमी खेतर समर्पित माल ढोआ ढुआई लांघे WDFC के तीन प्रमुख हिस्से राष्ट्र को समर्पित किए जिस नाल लांघे के संचालन का राह पदरा होया। इस मौके ते प्रधानमंत्री ने भारत के आवाजाई और लॉजिस्टिक्स खेतर विच तेजी नाल तब्दीली का जिक्र किया।
0: इस वर्ष लाल किले से मैंने विकसित भारत के लिए संकल्प की सप्त धारा का आह्वान किया है। इस सप्त धारा में एक धारा गति शक्ति की भी है। आज 2,800 किलोमीटर से अधिक का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट पूरा हो गया। ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 12-13 तारीख को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन दौरान कई नेतावां नाल दुवल्ली गलबात करेंगे। विदेश मंत्रालय के बुलारे यंतीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में एक मीडिया ब्रीफिंग दौरान यह जानकारी दी। नेपाल में आए पुराने अखाड़े से बोलते हैं श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने नेपाल के लोगों और सरकार नाल एकजुटता और हमदर्दी प्रकट की है। श्री जायसवाल ने कहा कि हड़ प्रभावित नेपाल में हुण तक 7 जहाजों राही 95 टन राहत समग्री भेजी जा चुकी है। कुछ होर राहत समग्री जल्द ही भेजी जाएगी। तबाहकुन हड़ा च मारे गए भारतीय नागरिकों बारे उन्होंने कहा कि उन्होंने पहचान लिए कोशिशां जारी ने।
2: मारे गए हमारे भारतीय नागरिक हैं, उनमें से कई लोग का पहचान नहीं हो पाया है। इस मामले में हम लोग उनके परिवारजन से बातचीत हमारी चल रही है और कई के मामलों में जो DNA की सैंपलिंग भी ली गई है। 273 लोग लापता हैं अभी और ये जो हादसा हुआ है नेपाल में हुआ है, तो हम लोग इंतजार करते हैं कि किस प्रकार का वहां की सरकार, वहां के अधिकारी इस पर क्या खुलासा करते हैं।
1: भारत चीन संबंधा बारे श्री जायसवाल ने कहा कि भारत चीन दरमियान संबंध हौली हौली उसारू दिशा वल वध रहे ने। उन्होंने कहा कि संबंधा का इस तरह साधारण होना लोगों नाल लोगों के संबंधा लिए बेहद अहम है। उन्होंने दस्या
2: 2025 और अगस्त 2026 में भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच बनी सहमति और उसके बाद मई और अगस्त 2026 में जो मीटिंग हुई थी बीजिंग में और दिल्ली में WMCC की बैठकों में, उस चर्चाओं पर आधारित वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की पहली फ्लैग मीटिंग 6 सितंबर 2026 को अरुणाचल प्रदेश के वाचा में और 7 सितंबर 2026 चीन की तरफ दमाई में आयोजित की गई।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और श्रीलंका के 3 दिना दौरे से कोलंबो पहुंच गए ने। इस दौरे का उद्देश्य दोनों देशों विचकार रक्षा और समुद्री खेतर में सहयोग को और मजबूत करना है। श्रीलंका के उपरक्षा मंत्री अरुणा जयसेकरा और श्रीलंका में भारत के हाई कमिश्नर संतोष शाह ने कोलंबो के भंडार नायक के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से श्री सिंह का स्वागत किया। श्री सिंह का श्रीलंका में निगत रवायती ढंग नाल स्वागत तो बाद दोवां देशां विचकार लंबे समय तो चले आ रहे मजबूत संबंधां नूं दर्शांदा है। आपने दौरे दौरान श्री सिंह श्रीलंका दी लीडरशिप नाल वख-वख मुद्दयां ते गलबात करनगे। इन्हां विच मुख तौर ते रक्षा ते समुद्री भाईवाली नूं मजबूत करना शामिल है। वो कोलंबो विच भारतीय भाईचारे दे मैंबरां नाल भी मुलाकात करनगे। श्री सिंह दे नाल रक्षा मंत्रालय ते विदेश मंत्रालय दे सीनियर अधिकारियां दा एक उच्च पदरी वफद भी श्रीलंका गया है। ये खबरां तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा एक्स हैंडल है @EIRRNJalandhar। भाजपा ने आम आदमी पार्टी की अगुवाई वाली पंजाब सरकार ते सूबे विच नशियां दी अलामत नूं काबू करन ते इसदे खात्मे लई ठोस कार्रवाई ना करन दा इल्जाम लाया है। नवी दिल्ली विच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नूं संबोधन करदे हुए भाजपा बुलारे गौरव भाटिया ने कहा कि पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवान मान दी निगरानी हेठ नशियां दा गठजोड़ वध फुल रहा है, पर फिर भी इसनूं रोकण लई अते ड्रग माफिया विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कीती गई। श्री भाटिया ने संगरूर जिले विच वापरी घटना दा भी जिक्र किया जदों एक निवासी ने पंजाब दे मंत्री हरपाल

आकाशवाणी ते जलंधर केंद्र ते तुसी इस वेले सुन रहे जी प्रोग्राम जिंदगी हसीन है। जी हाँ, जिंदगी हसीन है जेकर जिंदगी विच खुशियां ने। खुशी ओ नहीं हुंदी जो बाजारां विच खरीदी जा सके, खुशी तां ओ दौलत है जो कि दिल दे अंदरों पैदा हुंदी है। कदे किसे अपने दे प्यार भरी गल, कदे बिना किसे मतलब कीती हुई मदद, ते कदे अपनी मेहनत दा मिलिया होया निक्का जिहा फल, यही पल जिंदगी नूं खुशियां नाल भर दिंदे ने। खुशी दरअसल हालातां दी नहीं हुंदी, नज़रिए दी खूबसूरती है। जो दिल नूं मिल जाए उही असल खुशी है।

0: केंद्र ते तुसी इस वेले सुन रहे जी प्रोग्राम जिंदगी हसीन है। प्रोग्राम च वेला हो गया जी छोटे जिहे अंतराल दा, सो मुड़ वापिस आने हां इस अंतराल तो बाद।
1: सारिआं लई समाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: आज तक इस योजना नाल 9 करोड़ 50 लाख तो ज्यादा लाभपात्री जुड़ चुके हैं। कि तुसी भी 18 तो 40 साल की उम्र के हो तो मासिक अटल पेंशन समेत योजना के 3 गारंटेड लाभों की जानकारी ले अपनी बैंक शाखा नाल संपर्क करो। एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।
3: आजकल साइबर क्राइम दे नवे तरीकियां विच प्रचलित हो रहा है डिजिटल अरेस्ट, जिस विच कोई व्यक्ति अपने आप नू किसे सरकारी अदारे दा अफसर दस के वीडियो कॉल दे जरिए ऑनलाइन इंक्वायरी दा डरावा दे के अरेस्ट करन दी धमकी देंदा है, जिस दे डर नाल ओह किसे तों वी इंक्वायरी दे नां ते पर्सनल डाटा लै सकदा है ते उस नू गलत तरीके नाल उपयोग कर सकदा है। कोई भी सरकारी अदारा किसे तरह दी पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन नहीं मंगता। अपना पर्सनल डाटा देन तो पहला चंगे तरीके जांच पड़ताल कर लो, सावधान रहो, सचेत रहो, साइबर क्राइम तो बचो।
4: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
5: हेलो,
6: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
7: अजिही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लई रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
0: अंतराल तो बाद एक बार फिर तो सारे ही सुनने वालों का स्वागत करते हैं जी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र से। तुसी इस वेले सुन रहे प्रोग्राम जिंदगी हसीन है।

प्यार विच वादा करना सही है, पर वादा ओही होना चाहिए है जिसनों निभाउण दी सच्ची नीयत ते समर्था भी होवे। जिहड़ा वादा हालात बदलन दे बावजूद कायम रहे ओही प्यार दी असल पहचान हुंदा है। इसलिए प्यार विच वादे घट करो, पर जिहड़े वादे करो उन्हां नूं दिलों निभाओ भी।

जी हाँ, दिल दियां गल्लां हर किसी इंसान दे नाल नहीं कीतियां जा सकतियां। दिल दियां गल्लां सिर्फ उसे इंसान नाल ही असीं कर सकते हाँ जिहड़ा इंसान साडी खुशी विच खुश होवे, साडे दुख विच बिना किसी स्वार्थ तो साडे नाल खड़ा होवे। दिल दा दरवाज़ा सिर्फ उस इंसान लई ही खोलिया जांदा है जिहड़ा कि साडी खामोशी नूं पढ़ सके ते साडे भरोसे की कदर करे।

0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਸੀਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਯਾਨੀ 8:45 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਸੰਧਿਆ, 9 ਵਜੇ ਨਿਊਜ਼ ਐਟ 9, 9:15 ਵਜੇ ਸਪੋਟਲਾਈਟ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬਸ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की फिनटेक यात्रा नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है। इसमें नवाचार और समावेशन को केंद्र में रखा गया है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा, चिप से लेकर जहाजों तक भारत विनिर्माण के एक नए भविष्य का निर्माण कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन के श्रीलंका दौरे पर कोलंबो पहुंचे। यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा और समुद्री सहयोग को और मजबूत करना है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने के भारत के शांति प्रयासों का समर्थन किया है। कहा, इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा। बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, झारखंड, उड़ीसा और पूर्वोत्तर राज्यों में कल मूसलाधार बारिश की आशंका। और अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित कुल 5 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने अपनी फिनटेक यात्रा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकियां वित्तीय क्षेत्र में नई संभावनाएं खोल रही हैं।
2: 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर हमारे लिए और भी नई संभावनाओं लेकर आया है। एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन, क्वांटम, ऐसी टेक्नोलॉजीज फाइनेंशियल सेक्टर में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। अब हमारे सामने चुनौती है, इन संभावनाओं को वास्तविक इम्पैक्ट में कैसे बदले।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है।
2: हमें भारत में साइबर सिक्योरिटी को टॉप नॉच बनाना है। हमारी इंडस्ट्री के पास अपने इथिकल डेटा प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। हमें एक मजबूत फिनटेक रेगुलेटर इंडस्ट्री इनोवेशन इकोसिस्टम बनाना है और हमारे पास एक फिनटेक कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंडेक्स होना चाहिए, जिसके आधार पर हर कंपनी की पारदर्शी रेटिंग हो सके।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले महीने UPI के 2400 करोड़ से अधिक लेन देन हुए। भारतीय UPI अब 11 देशों में संचालित हो रहा है। श्री मोदी ने UPI को फिनटेक क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया।

0: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा यूपीआई। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत की 7.8% की विकास दर दुनिया को एक नया भरोसा दे रही है।
0: दुनिया कॉन्फ्लिक्ट और अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रही है, एनर्जी और कमोडिटीज की सप्लाई चेन्स पर दबाव है, ट्रेड को लेकर भी तनाव है और ये स्थितियां कई महीनों से बनी हुई है। इसमें भी अप्रैल से जून का क्वार्टर सबसे चैलेंजिंग रहा और इसमें भी जब भारत 7.8% से ग्रो करता है तो दुनिया को एक नया भरोसा मिलता है।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि 3 दशक के लंबे इंतजार के बाद जापान ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB+ से बढ़ाकर A- कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री मोदी ने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि ये गलियारा विकसित भारत की जीवन रेखा है।
0: ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस बात का साक्षी है कि बीते 12 साल में देश की काम करने की संस्कृति कैसे बदली है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभर रहा है और अब अपनी उन्नत रेलगाड़ी और मेट्रो कोच का निर्माण कर रहा है।
0: साथियों, अब भारत चीप से लेकर शिप तक निर्माण की एक नई गाथा लिख रहा है, यानी पुर्जे भी हमारे और प्रोडक्ट भी हमारा। आत्मनिर्भरता की पूरी चेन भारत में ही बनेगी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
0: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिन की श्रीलंका यात्रा पर कोलंबो पहुंचे। रक्षा मंत्री रक्षा और समुद्री साझेदारी को मजबूत करने सहित कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। वे कोलंबो में भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री के साथ रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाली ब्रिक्स बैठक के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध समाप्त करने में किसी भी तरह मदद करने के लिए तैयार है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने तुरंत मदद पहुंचाई और राहत बचाव तथा पुनर्निर्माण के प्रयासों में आगे भी सहयोग जारी रखेगा। उन्होंने बताया कि अब तक 7 विमानों के जरिए 95 टन राहत सामग्री नेपाल भेजी जा चुकी

0: की है। उन्होंने बताया कि मारे गए कई भारतीय नागरिकों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है।
1: मारे गए हमारे भारतीय नागरिक हैं, उनमें से कई लोग का पहचान नहीं हो पाया है। इस मामले में हम लोग उनके परिवारजन से बातचीत हमारी चल रही है और कई एक मामलों में जो डीएनए की सैंपलिंग भी ली गई है। 275 लोग लापता हैं अभी, और ये जो हादसा हुआ है नेपाल में हुआ है, तो हम लोग इंतजार करते हैं कि किस प्रकार का वहां की सरकार, वहां के अधिकारी इस पर क्या खुलासा करते हैं।
0: श्री जायसवाल ने बताया कि भारत चीन सीमा मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की बैठक अरुणाचल प्रदेश के वाचा और चीन के दमाई में हुई। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के शांति प्रयासों का स्वागत किया है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा ही है। रूस यूक्रेन संघर्ष का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से चाहता है और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। श्री पेस्कोव ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। श्री पुतिन प्रधानमंत्री मोदी को यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध की स्थिति की जानकारी भी दे सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं।
2: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 22 सितंबर को गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। एक रिपोर्ट।
3: आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म और भंगार को सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म चुना गया है। वहीं रामनामी को सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र का पुरस्कार दिया जाएगा। ब्रह्मयुगम के लिए मलयालम अभिनेता ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का पुरस्कार दिया जाएगा, जबकि यामी गौतम को आर्टिकल 370 के लिए सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। रणदीप हुड्डा को स्वतंत्र वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक के लिए सम्मानित किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के नॉन फीचर फिल्म वर्ग में पहली बार किसी संथाली फिल्म को सम्मानित किया जाएगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने नशीले पदार्थों की समस्या से निपटने में कोई ठोस कदम न उठाने के लिए पंजाब सरकार की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस्तीफे की मांग की है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के सामने ड्रग माफिया का पूरा तंत्र फल फूल रहा है।
4: गुलजार सिंह एक वीडियो बनाता है और वीडियो में वो 4 लोगों को इसका जिम्मेदार बताता है कि कैसे पंजाब में हर जगह नशीले पदार्थ युवाओं में बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है और सरकार मूक दर्शक बनी रहती है, कार्रवाई नहीं करती।
0: बम्बई उच्च न्यायालय ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी के मानहानि मामले में जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया। याचिका में राहुल गांधी के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के मजिस्ट्रेट न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अनुपस्थिति और अवकाश के दौरान जम्मू कश्मीर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक विज्ञप्ति में ये जानकारी दी गई है। कृषि मंत्रालय ने बताया है कि 4 सितंबर तक देश में खरीफ फसलों का क्षेत्रफल 1,086 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है। धान की खेती 421 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में और दालों की बुआई 117 लाख हेक्टेयर में हुई है। श्री अन्न और दरदरे अनाज की खेती 181 लाख हेक्टेयर से और तिलहन की खेती 191 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में किया गया है। ब्रिटेन ने भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना को मान्यता दे दी है। भारतीय निर्यातकों के लिए ये बड़ी राहत। ब्रिटेन ने कार्बन सीमा

आयोजन व्यवस्था के अंतर्गत दी है। इससे भारतीय निर्यातकों को एक ही कार्बन उत्सर्जन के लिए दो बार शुल्क चुकाने से राहत मिलेगी। भारत सुरक्षित 6G वायरलेस नेटवर्क के विकास में तेजी लाने के लिए अमेरिका की अगुवाई वाली वैश्विक साझेदारी में शामिल हो गया है। अमेरिका ने बताया कि इस पहल में ब्रिटेन, जर्मनी और जापान तथा कुछ और देश भी शामिल हैं। इसका उद्देश्य वर्ष 2030 के दशक में 5G नेटवर्क की जगह 6G तकनीक आने से कई वर्ष पहले ही विभिन्न देशों की 6G रणनीतियों के बीच समन्वय स्थापित करना है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बिहार, पश्चिम बंगाल के गंगा क्षेत्र, झारखंड, नागालैंड और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में भी बारिश की संभावना है। अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला के तीसरे चरण में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित 5 पदक अपने नाम किए। तोमन कुमार और श्याम सुंदर स्वामी ने कंपाउंड टीम स्पर्धा में और हरविंदर सिंह तथा विजय सुंडी की रिकर्व जोड़ी ने पुरुष टीम स्पर्धा में 1 स्वर्ण पदक हासिल किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की फिनटेक यात्रा नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है। इसमें नवाचार और समावेशन को केंद्र में रखा गया है। प्रधानमंत्री ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा, चिप से लेकर जहाजों तक भारत विनिर्माण के एक नए भविष्य का निर्माण कर रहा है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने के भारत के शांति प्रयासों का समर्थन किया। कहा, इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा। और अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित कुल 5 पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

असं आकाशवाणी ते जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। इस वेले 9:30 बजे ने हुण पेश है प्रोग्राम खेड संसार। अज दे इस प्रोग्राम च तुसी सुणोगे पद्म श्री बहादुर सिंह ते फीचर।

शास्त्र संगीत के प्रोग्राम सुरसाधना च हुण तुसी सुन रहे सी पंडित शिव कुमार दा संतूर ते वजाया राग सोहनी। असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। हुण पेश है प्रोग्राम सरगम।

जी हाँ, आशा भोसले जी की वरेगंड आज मनाई जा रही है। 1970 का दहाका आशा जी के करियर का बेहद चमकदार दौर सी। बहुत ही लाजवाब गीत, जी हाँ, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, दुनिया में लोगों को दम मारो दम, उन्हां दी आवाज दी रंगीनी ते रेंज दा सबूत ने। पर आशा जी सिर्फ चंचल या कैपरे गीतां तक ही सीमित नहीं सन। उमरा जान विच दिल चीज क्या है, इन आंखों की मस्ती के वर्गे गजल अंदाज गीता ने साबित कर दिता कि उन्हां दी आवाज विच नजाकत, दर्द ते शायरी दी डूंघाई भी बेमिसाल सी।

आशा भोसले जी ने भी तो वध भारतीय भाषावां विच 11,000 तो भी वध रिकॉर्ड कायम किए ते कई गीतां दा खजाना भी छटिया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने उन्होंने सब तो वध रिकॉर्डिंगा करन वाली महिला कलाकार वजों दर्ज किया गया है। उन्होंने दादा साहेब फालके पुरस्कार, पद्म विभूषण समेत कई वड्डे सम्मान मिले। फिल्म फेयर विच उन्होंने बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का पुरस्कार 7 बार जीतया। 2001 विच लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी प्राप्त किया। बाद के दहाकों विच उन्होंने नवी पीढ़ी के संगीतकारों के नाल काम किया ते रंगीला का एक गीत एक मिसाल है।

0: ਇਸੇ ਗੀਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਗਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ 11 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਮਾਚਾਰ, 11:05 ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਸਮਾਚਾਰ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने अपनी फिनटेक यात्राओं को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकियां वित्तीय क्षेत्र में नई संभावनाएं खोल रही हैं।
2: 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर हमारे लिए और भी नई संभावनाओं लेकर आया है। एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन, क्वांटम, ऐसी टेक्नोलॉजीज फाइनेंशियल सेक्टर में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। अब हमारे सामने चुनौती है इन संभावनाओं को वास्तविक इम्पैक्ट में कैसे बदले।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है।
2: हमें भारत में साइबर सिक्योरिटी को टॉप नॉच बनाना है। हमारी इंडस्ट्री के पास अपने इथिकल डेटा प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। हमें एक मजबूत फिनटेक रेगुलेटर इंडस्ट्री इनोवेशन इकोसिस्टम बनाना है और हमारे पास एक फिनटेक कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंडेक्स होना चाहिए जिसके आधार पर हर कंपनी की पारदर्शी रेटिंग हो सके।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने अपनी फिनटेक यात्रा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले महीने UPI के 2400 करोड़ से अधिक लेन देन हुए। भारतीय UPI अब 11 देशों में संचालित हो रहा है। श्री मोदी ने UPI को फिनटेक क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया। श्री मोदी ने कहा कि भारत की 7.8% की विकास दर दुनिया को एक नया भरोसा दे रही है। प्रधानमंत्री ने बताया कि 3 दशक के लंबे इंतजार के बाद जापान ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB+ से बढ़ाकर A- कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री मोदी ने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि ये गलियारा विकसित भारत की जीवन रेखा है।
2: ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस बात का साक्षी है कि बीते 12 साल में देश की काम करने की संस्कृति कैसे बदली है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है और अब अपनी उन्नत रेलगाड़ी और मेट्रो कोच का निर्माण कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिन की श्रीलंका यात्रा पर कोलंबो पहुंचे। रक्षा मंत्री रक्षा और समुद्री साझेदारी को मजबूत करने सहित कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। वे कोलंबो में भारतीय समुदाय से भी बातचीत करेंगे। रक्षा मंत्री के साथ रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाली ब्रिक्स बैठक के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी तरह की मदद करने के लिए तैयार है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने तुरंत मदद पहुंचाई और राहत बचाव और पुनर्निर्माण के प्रयासों में आगे भी सहयोग जारी रखेगा। उन्होंने बताया कि अब तक 7 विमानों के जरिए 95

0: टन राहत सामग्री नेपाल भेजी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि मारे गए कई भारतीय नागरिकों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत चीन सीमा मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की बैठक अरुणाचल प्रदेश के वाचा और चीन के दमाई में हुई है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के शांति प्रयासों का स्वागत किया है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा ही है। रूस यूक्रेन संघर्ष का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से चाहता है और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला के तीसरे चरण में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित 5 पदक अपने नाम किए। तोमन कुमार और श्याम सुंदर स्वामी ने कंपाउंड टीम स्पर्धा में, हरविंदर सिंह तथा विजय सुंडी की रिकर्व जोड़ी ने पुरुष टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi said that India has taken fintech journey to new heights with innovation and inclusion at its core. He said technologies like agentic AI, tokenization and quantum are opening new possibilities in the financial sector. Mr. Modi said this while addressing the 7th edition of the Global Fintech Fest in Mumbai this evening.
2: 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर हमारे लिए और भी नई संभावनाओं लेकर आया है। एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन, क्वांटम ऐसी टेक्नोलॉजीज फाइनेंशियल सेक्टर में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। अब हमारे सामने चुनौती है इन संभावनाओं को वास्तविक इम्पैक्ट में कैसे बदले।
1: The Prime Minister hailed UPI as a champion of fintech, noting that more than 2,400 crore UPI transactions were recorded in the last month. He said Indian UPI is now operational in 11 countries. Mr. Modi stressed that global collaboration in fintech systems should be new goal to reduce transaction costs in remittances. The Prime Minister urged stakeholders at the GFF 2026 to use fintech as a tool for financial inclusion. Lauding the country's remarkable GDP growth in the last quarter, Mr. Modi said, world has gained reassurance from India's 7.8% growth despite challenging global conflicts and commodities. Till 11th September. Defence Minister Rajnath Singh arrived in Colombo today on a 3-day visit to Sri Lanka aimed at deepening bilateral defence and maritime cooperation. Mr. Singh was warmly welcomed at Bandaranaike International Airport by Sri Lankan Deputy Minister of Defence Aruna Jayasekara and Indian High Commissioner to Sri Lanka Santosh Jha. During his visit, the Defence Minister will hold talks with the Sri Lanka's leadership on various issues to further strengthen bilateral ties and mutually beneficial partnership. Russia today said that it welcomes any peace efforts by India to end the Ukraine conflict, noting that Moscow's strategy aligns closely with New Delhi's position for a resolution through dialogue and diplomacy. Kremlin spokesman Dmitry Peskov made the remarks while addressing media at a virtual briefing in New Delhi this afternoon ahead of the BRICS summit. Mr. Peskov said they know the position of India on the Ukrainian conflict and to a great extent it corresponds with their own position because they do want the solution to the Ukraine conflict by peaceful means and Russia is open for this process. He said Prime Minister Narendra Modi and Russian President Vladimir Putin will hold bilateral talks on the sidelines of BRICS summit later this week. The government has approved strategic investment plans with an aggregate project outlay of over 735 crore rupees for ITI clusters in Rajasthan, Uttar Rupees investment plan for Rajasthan, over 240 crore rupees for Uttar Pradesh and 254 crore rupees investment plan for Telangana. It was approved during the 5th National Steering Committee NSC meeting of the Pradhan Mantri Skilling and Employability Transformation

0: होल्ड करना। हेलो,
1: हेलो,
0: हाँ जी स्वागत है जी प्रोग्राम। हेलो
1: हेलो हेलो सर जी नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, ते अपने बारे दस दो जनाब, कौन ते कित्थो जी?
1: गुरदासपुर तो जनक राज जी।
0: होर सुनाओ जनक राज जी, गीत केड़ा सुनाइए
1: सर जी? गाना सुना जो आपसे मस्ताना दा कुंडला तो खुश हो रही है।
0: फोन करने लिए शुक्रिया जी।

अगली फरमाइश है जी, पिंड हरजी राम मलोड़ तो महेश गर्ग, सुशील गर्ग, जशन गर्ग, विनोद गर्ग, मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना तो विनोदपुरी वीपी रंजू, अशोकपुरी, सुशीलपुरी, नीलमपुरी, बीकेपुरी, कैलाशपुरी, रमापुरी ते आरएसपुरी, मुक्तसर तो बाबू सिंह तिमान, बलजिंदर कौर तिमान, रवनीत, नीशू ते भुपिंदर। फरमाइश इन्हां दी सतिंदर सरताज की आवाज़ च साई।

0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी, नमस्कार जी।
1: सर, नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, ते अपने बारे दस दो जी।
1: नमस्कार जी,
0: नमस्कार, ते अपने बारे दस दो, कौन ते
1: मैं
0: कित्थों जी,
1: कांत वर्मा बोल रही जी, हिमाचल प्रदेश सोलन शिमला कसौली।
0: ते फरमाइश भी दस दो जी अपनी।
1: फरमाइश सर जी, आप सुना दो, गुरदास मान जी की आवाज में सुना दो जी, मुड़ मुड़ यादस्तान दी पिंड दी गलियां दी।
0: फोन करने लिए शुक्रिया जी।

0: हेलो
1: हेलो भाजी, जय श्री राम।
0: जय सियाराम जी। कौन जी ते कितों जी?
1: तहसील जिला गुरदासपुर, ब्लाक दीना नगर, पिंड नहर पटवाया तो सुरजीत कुमार उर्फ तोती बोलता
0: क्या बात है तोती जी, ते गीत केड़ा जी?

0: हेलो,
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार जी। ते अपने बारे दस्सो जी, आप कौन थे, कित्थों जी?
1: महेश गर्ग मंडी हरजीरा मलोड़ तो बोल रहे हैं सर।
0: होर सुनाओ जी, की हाल चाल है?
1: बहुत वधिया सर।
0: ते किहो जिहा बीतिया जी अज दा दिन? जी
1: दिन वधिया लंघ
0: ते गीत दी फरमाइश भी दस दियो जी।
1: जी। कल सुन जा बलोरी नैना वाली रणजीत बावा ते गुरलेज अख्तर जी।
0: गुरलेज अख्तर ते रणजीत बावा,
1: हाँ
0: देख लैने जी। गीत नहीं होएगा तां तुहानू गुरलेज अख्तर दा गाया जरूर सुना देंगे, चेक कर लेने एक बारी।
1: ठीक
0: आपां करदे की हो
1: गीत
0: जी?
1: तो है ही, बाकी तुहानू मिलदा जाना मतलब वक्री गल
0: करदे की हो जी?
1: है। मेरा इलेक्ट्रॉनिक का काम है जी।
0: ठीक है जी। रंजीत बाबा नहीं निकलिया जी, पर गुरलेज अख्तर दी आवाज़ से गबरूआ सुना देने हैं जी। ते जे
1: ठीक
0: गीत
1: है
0: मिल
1: सर।
0: गया ते ये भी जरूर सुना देंगे। तुहाडी फरमाइश दा फोन करने लिए शुक्रिया जी।
1: धन्यवाद
0: कुछ सुनेहे भी शामिल कर लेने हैं जी। पुरानी मंडी मुल्लांपुर तो राजेश जैन, अरुणा जैन, अक्षम जैन, गौतम जैन, रसगुल्ला जैन ते नगीना जैन। पंचकुला सेक्टर 9 तो आशु चुग, अश्विनी चुग, गोविंद चुग, टोनी दीवान, लव दीवान, राधे, भाविक डिंगरा, गांधी चौंक रोपड़ तो हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जयतेग विरक ते मीका विरक, अमन वर्मा, रमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा, डॉक्टर मदन लाल वर्मा ते पूरी वर्मा परिवार। नज़दीक बस स्टैंड पिंड बुरज हनुमानगढ़ जिला फाजिलका तो, पिंड पक्खी खुरद फरीदकोट तो सतनाम सिंह गिल, गुरिंदर गिल, गुरलीन ते पूरा गिल परिवार। गुरलेज अख्तर दी आवाज़ से गीत।

0: हेलो
1: हेलो सर जी, नमस्कार सर जी।
0: नमस्कार जी, ते अपने बारे दस दो जी, कौन ते किथो जी?
1: डेरा कलोनी फाइल का तो धर्मा सागर बोल रहे सर जी।
0: होर सुनाओ धर्मा सागर जी, की हाल चाल है तुहाडे ते?
1: बहुत वधिया सर जी,
0: होर
1: थोड़ी जी घटी है।
0: हाँ जी,
1: गर्मी थोड़ी जी घटी है, गर्मी पै रही बहुत ज्यादा।
0: क्या बात है जी, ते हुन असू चढ़न वाला है जी। कहंदे ने जी बसंत आंदी है ते पाला उड़न तो आंदा, ते असू आंदी है ते गर्मी उड़न तो आंदी है जी।
1: हां जी हां जी हां जी,
0: ते मौसम हुन बसंती होए ना, बिल्कुल ना गर्मी ना सर्दी।
1: बूहे बारियां,
0: हां जी बूहे बारियां गीत सुनाने है जी। फोन करने लई शुक्रिया जी।
1: थैंक यू सर।

0: हेलो
1: हेलो अश्विनी भाई, नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी। ते अपने बारे दस दो जी, कौन ते किथों जी?
1: अश्विनी भाई बिट्टू दूरदर्शन बैठक लंगूर से अश्विनी भाई
0: होर सुनाओ बिट्टू जी, गर्मी घट रही है,
1: जी। बिल्कुल जी बिल्कुल, थोड़ा मौसम चेंज हो रहा
0: पसीना आना घट गया, हुमस घट गई
1: था,
0: है,
1: पसीना घट गया, ठंडक महसूस होने चाहिए।
0: ज्यादा दौड़ भज करो तो पसीना आ जाता, नहीं तो थोड़ पखे की हवा भी ठंडक देंदी है।
1: हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत फर्क पिया करो जी।
0: ते फरमाइश दस दियो जी, गीत केड़ा जी?
1: शोले का
0: जरूर सुनावांगे जी, फोन करने लई शुक्रिया जी।
1: ओके जी, बाय।

0: हेलो
1: हेलो, नमस्कार अश्विनी जी।
0: नमस्कार जी। ते अपने बारे दस दियो जी, कौन ते कित्थों जी?
1: श्री गुरु रविदास नगर मलोट तो फकीर चंद रसगनिया जी।
0: होर सुनाओ रसगनिया जी, की हाल चाल है तुहाडे ते मलोट दे जी?
1: मलोट भी ठीक है ते साडे ही वधिया जी। जी
0: होर
1: सुनाओ
0: वधिया
1: तुसीं
0: होए ने
1: अपने
0: जदों
1: पंजाब
0: सारे
1: दे।
0: दोस्त सुनणगे तुहाडी फरमाइश दा गीत। ते फरमाइश दस दियो जी,
1: कंठ कलेर सौदा सुनाओ जी।
0: कंठ कलेर दा गाया गीत तुहानू सुनाने अज दिल।
1: थैंक यू, बड़ा
0: फोन करने लिए
1: बड़ा
0: शुक्रिया जी।
1: थैंक यू।

तिलक जन्यू राखा प्रभ ताका, कीनो बड़ो कलु मह साका, साधन हेत इति जन करी, सीस दिया पर सी ना उच्चरी, तर्म हेत साका जिन किया, सीस दिया पर सिरर न दिया। ए इलाही बोल साहिबे कमाल साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी वलों उचारे गए, जो आप जी दे पिता साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी द्वारा धर्म हेत कीते गए साके दा चित्रण करदे ने। सम्मत 1678 बिक्रमी नू पिता साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे गृह विखे माता नानकी जी दी कुखों साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी ने अवतार तारिया। आप जी प्रभु भगति विच लीन रहिंदे सन। आप जी दे जन्म वेले ही ए बचन उचारे गए, प्रगट पए गुर तेग बहादुर, सगल सृष्ट पै तापी चादर। ते नाल ही आप जी बाबत ए भी फरमाया गया, तेग बहादुर चादर हिंद, दनिंद मनिंद पए अवतारे। आप जी ने बाणी राही मनुखता नू बहुमुल्य उपदेश बख्शे। आप जी द्वारा उचारे गए 59 शब्द अते 57 श्लोक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच सुभाए मान ने, जिन्हां दे भाव अत्यंत गहन अते अत्यंत विशाल ने। आप जी दी बाणी विच एक प्रभु दी सर्वव्यापकता अते संसार दी नाशवानता दे संदेश ने। आप महान योधे भी होए, आप त्यागी भी होए, आप जी ने अपना आप ही धर्म हित कुर्बान कर दिता। संवत 1732 बिक्रमी नू अपने अनन प्यारे सिखां भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी अते भाई दयाला जी की शहादत उपरंत आप जी भी अदुत्ती शहादत प्राप्त कर गए। ये धर्म हित एक अदुत्ती साका सी। साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी ने होरना रागां तो इलावा राग जय जयवंती विच वी बाणी उचारी। आप जी मनुख मातर नू उस परम पिता परमेश्वर नू चेते रखण दी हिदायत करदे ने, ते इस कारज नू उत्तम कारज बयान करदे ने। आप जी फरमाउंदे ने कि ऐ मनुख, माया दे संग नू त्याग के प्रभु दी शरण लोच, प्रभु दी शरण लग जा। जगत दे सुखां दा माण ना कर, ए सुख झूठे ने, ए सब झूठ दा पसारा है। इस समुच्चा संसार, इस समुच्चा जगत झूठ दा पसारा।

अहे तू ओस प्रभु दा सिमरन कर, ओस राम दा सिमरन कर, यही तेरा मुख कारज है। राम सिमर राम सिमर, यह तेरा काज है। माया को संग त्याग, प्रभजु की शरण लाग। जगत सुख मान मिथ्या, झूठो सब साज है। सिरवण करदे आ भाई हरजिंदर सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गाया होया ये शब्द।

राम सिमर एह तेरा काज है, माया को संग त्याग, प्रभजू की शरण लाग, जगत सुख मान मिथ्या, चूठो सब साज है। इस शब्द का गायन कीता सी भाई हरजिंदर सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने। साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी राग जय जयवंती च उचारित एक होर शब्द विच, जो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंग 1352 ते सुभाए मान है, आप जी फरमाउंदे ने कि ऐ प्राणी उस प्रभु दे नाम दी भजन बंदगी कर, ए मनुखा जन्म बीतदा जा रहा है, ऐ मन तैनू बार बार की कहा जाए, तू समझदा क्यों नहीं, ऐ मूरख मन ए तन बिनसद्या समा नहीं लगना। जिस तरह पानी तो बनया बर्फ दा ओला थोड़ चिरा हुंदा है, तेरे शरीर दी गत भी यही होनी है। फरमान है, राम पज जन्म सिरात है, कहो कहा बार बार, समझत नह क्यों गवार, बिनसत नह लगे बार, उरे समगात है। सरवण करदे हां भाई बख्शीश सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वालों गाया हुआ।

0: राम पज जन्म सिरात है। इस शब्द का गायन कीता सी भाई बख्शीश सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने। हुण सरवण करदे हां इस शब्द की व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी गुरचेतन सिंह।
1: जैजावंती महला नौवां। राम भज जन्म सिरात है। कहों कहां बार बार समझत नह क्यों गवार। बिनसत नह लगे बार ओरे समगात है रहाओ। सगल भरम डार देहे गोबिंद को नाम लेहे। अंत बार संग तेरे एह एक जात है। बिखिया बिख ज्यों बिसार प्रभ को जस हीए तार। नानक जन कह पुकार अवसर बिहात है। एह पावन पवित्र शब्द नौवें गुरदेव गुरु तेग बहादुर साहब जी की पावन पवित्र रसना तो उचारण किया होया। राग जैजावंती विच दर्ज श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे मुबारक पावन पवित्र अंग 1352 उपर सुभायमान है। आरंभक पंक्ति विच सतगुरु जी कृपा करदे हन। राम भज जन्म सिरात है। हे भाई परमात्मा दा भजन करिया कर। परमात्मा दा भजन करिया कर। मनुखा जन्म लंघदा जा रहा है। भैरो राग विच वी भगत कबीर जी भी यही बख्शिश करते हैं। जब लग जरा रोग नहीं आया। जब लग काल ग्रसी नहीं काया। जब लग बिकल पई नहीं बानी। भज ले रे मन सारंग पाणी। अगली पंक्ति विच सतगुरु जी फुरमान करते हैं। कहों कहां बार बार समझत नह क्यों गवार। हे मूर्ख मैं तेनू मुड़ मुड़ की आखा। तू क्यों नहीं समझदा। सतगुरु जी फिर अगली पंक्ति विच ए बख्शिश करदे हन। बिनसत नह लगे बार ओरे समगात है रहाओ। तेरा ए शरीर नाश होण विच गड़े वर्गा ही है। इस दे नाश हुंदिया बहुता चिर नहीं लगदा। एक थां ते गुरबाणी विच गुरु तेग बहादुर साहब जी फरमाउंदे हन। अस्थिर जो मान्यो देहे सो तौ तेरो होए है खेहे। क्यों ना हर को नाम लेहे मूर्ख निलाज रे। जिस अपने शरीर नू तू सदा कायम रहन वाला समझी बैठा है तेरा ए शरीर तां सुआह हो जाएगा। हे मूर्ख हे बेशर्म तू क्यों परमात्मा दा नाम नहीं जपदा। इस पावन पवित्र शब्द दे पहले पदे विच गुरु तेग बहादुर साहब जी सानू उपदेश करदे हन। सगल भरम डार देहे गोबिंद को नाम लेहे। अंत बार संग तेरे एह एक जात है। सारियां भटकना छड़ दे परमात्मा दा नाम जपया कर। अंतले समय तेरे नाल सिर्फ नाम ही जान वाला है।

तिलक जन्यु राखा प्रभ ताका, कीनो बड़ो कलु महसाका। इस शब्द का गायन कीता सी भाई दविंदर सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

हुणे तुसीं भगती रचनावां सरवण कर रहे सी। DTH दी पंजाबी प्रसारण सेवा दा इह जलंधर केंद्र है। तुसीं सुन रहे हो आकाशवाणी पंजाब। तड़के दे 4 वज गए ने। आओ असीं तुहानूं श्री दरबार साहब अमृतसर लै चलदे हां, जिथों तुसीं शब्द कीर्तन दा सिद्धा प्रसारण सरवण करोगे।

हाँ मैं बंदना पृथ्वी जो नहीं पाए, हाँ मैं कितरों पूजा कितन जमे जा, हाँ मैं हुक्म है पै कित फिराए, हाँ मैं दीर्घ रोग है दारू भी समाए, कृपा कर जा पणी तां गुर का शब्द कमाए।

0: अलमल खाई सिर छाई पाई मूर खंदे पत गवाई गिणना मैं किस थाई ना पाई रहे बेबाणी मड़ी मसाणी अंदर जाने फिर पछताणी
1: सतगुर पेटा सो।

राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ मैं सनहार कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पहनण हार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूपया पार कूड़ मिया कूड़ बीबी खप होए खा।

श्री भगत प्रहलाद, श्री प्रहलाद भगत उधरियं, हस्त कमल माथे पर धरियं, अलख रूप जी लख्या न जाई, साध

गोर जहाज खेवट गुरु गुर बिन तरया न कोए गुर प्रसाद प्रभ पाईया गुर बिन मो

उदद गुर गहर गंभीर बेअंत हर नाम नग हीर मन मिलत लिवलाइया फुन गुरु परमल सरस करत कंचन परस मैल दुरमत हिरत शब्द गुर त्याईया अमृत प्रवाह छुटकंत सद द्वार जिस ज्ञान गुर बिमल सर संत सिख नाइया नाम निर्वाण निदान हर उर धरो गुरु गुर गुर करो गुरु हर पाइया नाम निर्वाण निदान हर उर धरो गुरु।

0: गुरमुख संगत सब विचारो वाहो वाहो का बड़ा तमाशा।
1: या खेल बड मेहल तमाशा वाहे गुरु तेरी सब रचना तू जल थल गगन पयाल पूर रहया अमृत ते मीठे जाके बचना माने ब्रह्मादिक रुद्रादिक काल का काल निरंजन जचना गुर प्रसाद पाये परमारथ सत संगत सेती मन खचना। या खेल बड मेल तमाशा वाह गुरु तेरी सब रचना।

परम पैपुले सुत दारा से प्रीत लगा एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाट कीरत की गुरे रामदास राखो सरनाई एक अरदास पाट कीरत की गोरे रामदास राखो।

दर्शन परसया गुरु का जानम मरण दुख होवै सिफत खसामदी नूर अरसह कुरसह तुद डठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी सजन सच्चा पातशाह सिरसा हांदे जिस

गुरु बोलो जे पंजा प्यारिया चौहान साहिब जादिया चालिया मुक्तिया

गुरु बोलो जे प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। चित आवे चित आवण का सदका सर्ब सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रचिया रियायत। देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहेब जी सहाय खालस जी के बोल बाले। बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान सिरदान नाम दान। श्री अमृत सार साहिब जी दे दर्शन इशनान। चौंकियां झंडे बुंगे जुगों जुग अटल धर्म का जयकार। बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे सिखा दा मन नीवा मत उची मत पत दा रखा आप वाहे गुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दातार जिया। श्री ननकाना साहिब अते होर गुरद्वारे गुरधामा दे जिन्हां तों पंथ नूं भी छोड़िया गया है। खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो।